मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 988 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल के 909 किलोहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ जोन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आज मंगलवार है, शक्षमवत 1948 की श्रावण मास की 27वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 18 अगस्त 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:56 होने वाले हैं। अब हमारे केंद्र से आज के प्रसारण मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होते हैं।

मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ जोन AIR ऐप पर। यह आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में।

0: فرحت ناز. झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरुला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। एफआईएच महिला हॉकी विश्वकप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani.

सात्रोमीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ जोन या ऐप पर। यह आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। श्रोताओं, आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने साथी कुंदन कटारिया का आपका साथी हाजिर है ये भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम लेकर। श्री हनुमान जी की शक्ति, निष्काम सेवा और अनन्य भक्ति के जीवंत प्रतीक हैं। उनके प्रति हमारे भक्ति विचार ये सिखाते हैं कि असीम बल होने पर भी विनम्रता कैसे रखी जाती है। श्री बजरंगबली का पूरा जीवन प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण और अटूट विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री हनुमान जी ने बिना किसी फल की इच्छा के हमेशा प्रभु श्री राम की सेवा की। उनकी हर सांस में केवल प्रभु श्री राम का नाम बसा है। श्रोताओं, आइए आज के वंदना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्री हनुमान जी के इस भजन के साथ।

श्रोताओं, आइए अगली भक्ति रचना इन विचारों के साथ भगवान शिव की आराधना केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन और संपूर्ण समर्पण है। महादेव की भक्ति मनुष्य को अहंकार से मुक्त कर आंतरिक शांति, संतुलन और सत्य का बोध कराती है, क्योंकि वे इस सृष्टि के आदि, अंत और आधार है। आइए भोलेनाथ को याद करते हैं।

श्रोताओं, श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम, आनंद और दिव्यता का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी बांसुरी की मधुर तान से पूरा ब्रज और प्रकृति मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बांसुरी अंदर से बिल्कुल खाली होती है। यह सिखाती है कि जब इंसान अपने अहंकार और इच्छाओं को पूरी तरह त्याग देता है, तभी ईश्वर उसके माध्यम से अपनी सुरीली धुन बजाते हैं।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। अगली भक्ति रचना इन विचारों के साथ। माता रानी शक्ति, करुणा और ममता का प्रतीक हैं। उनकी सच्ची भक्ति मन को शांति और जीवन में साहस देती है। माँ के चरणों में ही संपूर्ण जगत की सुख शांति और आश्रय मिलता है। माँ के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता है।

श्रोताओं, आइए अगली भक्ति रचना इन विचारों के साथ। भगवान श्री झूलेलाल जी जल, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। उन्हें वरुण देव का अवतार माना जाता है। उनका जीवन हमें प्रेम, भाईचारा और साहस का संदेश देता है। उनका ये पावन स्मरण मन में अटूट श्रद्धा जगाता है। जल ही जीवन है। भगवान श्री झूलेलाल जी जल पर विराजमान होकर ये सिखाते हैं कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। आइए भगवान झूलेलाल जी को याद करते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से, अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। आइए सुने चिंतन। आज का विषय है धोक और वाचक स्वर हैं प्रेम सिंह गोदारा के।
1: हमारे ऋषि मुनियों ने पारिवारिक सुख शांति के लिए समाज को एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी है, जिसका आधार वैज्ञानिक है। प्रत्येक घर में एक छोटा सा थान या मंदिर बना होता है। घर का प्रत्येक सदस्य अपना दैनिक काम शुरू करने या कहीं बाहर जाने से पहले थान पर धोक अवश्य मारता है। धोक मारने के लिए वह थान के आगे पलाथी मारकर शांत चित्त से बैठता है और अपने मन में उठने वाले विचारों को जानता है।

0: यदि कोई अशुभ विचार मन में चल रहा हो तो इसे अपने इष्ट देव को समर्पित कर देता है। शुभ विचारों को भी साक्षी भाव से देखता है और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है कि आप जैसे सद्गुण मुझ में भी विराजे, मुझ में भी आए। मैं जहाँ भी जाऊँ और मुझसे जो भी कार्य हो वो अच्छे ही हों, अर्थात मुझे आपसे वो रोशनी मिले, वो रास्ता मिले, जिससे मैं बुरे कार्यों से बच सकूं। मेरा मन समता और विद्या में स्थित रहे। हे मेरे देव, आप ही मेरे सब कुछ हैं और मैं आपका हूँ। इस तरह से अपने मन को निर्मल चित्त रखते हुए जो भी कार्य किया जाता है वह अपने आप ही सही ही होता है। गलत होने की संभावना न के बराबर रह जाती है। अपने आप सही रास्ते मिलते हैं, सही लोग मिलते हैं जो हमारी सच्चे दिल से मदद करते हैं। लंबे अनुभव से ऐसा जाना गया है कि जैसी हमारे चित्त की चेतना होती है, यानी जैसे हमारे मन में उठने वाले विचार होते हैं जो हमारे शरीर पर होने वाली संवेदनाओं से पैदा हुए होते हैं, जिनकी अपनी स्वयं की एक तरंग होती है, वो तरंग चारों तरफ के वातावरण में फैलती रहती है और यह तरंग अपने आप अपने स्वभाव वाली तरंगों से, यानी अपनी जैसी तरंग से समरस हो जाती है, उससे मिल जाती है। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके, अपने मन में दुर्भावना जगा करके कहीं किसी काम से जाता है तो उसका काम संपन्न नहीं होते देखा गया है। जब वह व्यक्ति सांझ को घर लौटता है तो वह असफलता, अशांति और व्याकुलता लिए हुए ही लौटता है और कहता है, घर से निकलते ही मैंने आज न जाने किसका मुंह देखा, आज कोई भी कार्य संपन्न नहीं हुआ। वह यह नहीं सोचता कि जब मैं घर से गया था तब अशांति, व्याकुलता और बेचैनी ही तो लेकर के गया था और वही तो लेकर के आया हूँ। इसमें किसी परमात्मा, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थिति का क्या दोष है? हम वही पाते हैं जो हम होते हैं। कुदरत और प्रकृति का बंधा बंधाया नियम है जिसे कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। यदि हमें सुख शांति व समृद्धि चाहिए तो इस धोख को कर्म कांड न बना करके इसे विधिवत करना ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम भागते हुए से थान पर गए, तिलक निकाला और भाग गए। यह कर्म कांड है जो कभी भी लाभ नहीं दे सकता। धोख जब लाभ नहीं देगी तो लोग इसे अंधविश्वास मान करके छोड़ भी देंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि थोड़ी देर यानी 10-15 मिनट बैठ करके विधिवत धोख मारी जाए ताकि चित्त की तरंगे शुद्ध हों, जिससे शुद्ध चित्त वाले लोगों से हमारा मिलन हो और धोख का लाभ मिल सके। देवी देवता हमारे चित्त को निर्मल करने का आलंबन ही नहीं है, बल्कि उनकी ऊर्जा आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है। ये तरंगें उन तरंगों को अपने समरस कर ही लेती हैं जो उनके जैसी होने का जरा सा भी प्रयास करती हैं। बस ईमानदारी के साथ थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है ताकि शुद्ध व शांत वातावरण के निर्माण में हम सहयोगी होकर के मानव कल्याण कर सकें।
1: धोक विषय पर आप चिंतन सुन रहे थे प्रेम सिंह कोदारा से। लीजिए सुनिए यह संदेश।

बिल्कुल श्रोताओं, ये है आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे, खेती हरा वास्ते। जानकारी का विषय रहेगा, दीमक से खेत को कैसे बचाएं। श्री रामचरित मानस का नाम सुना करते हैं 7:20 पर। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 338 को। कार्यक्रम सुप्रभात आप सुना करते हैं 7:30 पर। आज इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे कुछ विषयों पर और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। 8:00 वक्त रहता है समाचारों का, हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाते हैं। भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 8:45 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार 9:00 आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाते हैं। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुनेंगे 9:10 पर। आज के हमारे कलाकार होंगे रामचरण दास। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 9:30 पर। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 10:00। फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे दिन में 11:00। एक ही शीर्षक से ये आप सुनेंगे दिन में 12:05 पर। गज़लों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। खेत खलियान कार्यक्रम 12:50 पर। जानकारी का विषय रहेगा सिंचाई की आधुनिक विधियां। दिन में 1:05 पर कार्यक्रम घर आंगन। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 3:00 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुना करते हैं युवावाणी 5:00। सिराइकी का समय रहेगा 6:05 पर। किसान वाणी आप सुनेंगे 7:00 आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुना करते हैं चौपाल 7:30 पर। एक ही फिल्म से 8:00। राजस्थानी कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे 9:15 पर। इस कार्यक्रम की आप रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं 11:00। हमारे कॉल नंबर हैं 01509-220-992-220-993। और इस कार्यक्रम के प्रस्तोता होंगे श्रीपाल शर्मा और संयोजक नवीन सिसोदिया। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा आप सुनेंगे 10:00।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। ये वक्त हो चला है समाचारों का। हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार, पहले संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर समाचार अंग्रेजी में।

0: सन्देशे सः उक्तवान् यत् सुरक्षाबलैः चतुर्दशराज्याणां विभिन्नेषु स्थलेषु समन्विताभियानानि प्रचालितानि यैः एतत् जालं ध्वस्तीकृतम्। एतत् भारतस्य आतंकवादं प्रति शून्यसहिष्णुतायाः उत्कृष्टम् उदाहरणमस्ति। सुरक्षासंस्थाभिः अस्य मासस्य द्वादशदिनाङ्के राज्यारक्षिबलैः सह तत्क्षणं गुप्तसूचनानाम् आदानप्रदानस्य प्रणाल्याः उपयोगं कृत्वा शहजाद् भट्टिजालेन सम्बद्धानां विध्वंसात्मकप्रयासानां प्रतिरोधाय समन्वितं बहुराज्यीयम् अभियानं प्रचालितम्। एतत् जालं विविधेषु आतंकिकार्येषु संलग्नम् आसीत्। झारखण्डे जेपीएससी अथ जेएसएससी चेत्येतयोः परीक्षयोः अभ्यर्थिनां चतुर्विंशति दिवसीय विरोध प्रदर्शनस्य अनन्तरं राज्यप्रशासनेन 24,000 जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अथ च टीडीपीएल संस्थया आयोज्यमानाः सर्वाः प्रतियोगी परीक्षाः निरस्ताः। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ह्यः सायं विशेष मंत्रिमंडलोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा एतत् निर्णयम् उद्घोषितवान्। राज्यप्रशासनेन 2014 झारखण्ड लोकसेवायोगेन अथ झारखण्ड कर्मचारी चयनायोगेन च आयोजितानां नियुक्तिपरीक्षाणां व्यापकपरीक्षणस्य अपि आदेशः प्रदत्तः। किन्तु छात्रनेता पीयूषकुमारः उक्तवान् यत् 11-13 जेपीएससी परीक्षाणां तथा केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य अन्वेषणात् सम्बद्ध प्रदर्शनकारिणां याचनाः अद्यापि विचाराधीनाः सन्ति। प्रदर्शनकारिणः छात्राः उक्तवन्तः यत् ते स्वीया अवशिष्ट याचना विषये चर्चां करिष्यन्ति तथा अग्रिम कार्याचरण विषये अपि निर्णयं करिष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनेन चरणबद्धरीत्या स्नातक स्नातकोत्तर अतिविशेषज्ञता स्तरीय चिकित्सकीय शिक्षा संस्थानानां संख्यां वर्धयित्वा राष्ट्रिय राजधान्यां चिकित्सा शिक्षायाः क्षमतां वर्धयितुं सज्जः अस्ति। अस्य योजनायाः अन्तर्गतं प्रशासनेन त्रिमुखी कार्यनीतिः स्वीकृता अस्ति। अस्यां नवसंस्थानां संस्थापना, विद्यमानसंस्थानां विस्तारः तथा स्नातकोत्तर उन्नत चिकित्सकीय कार्यक्रमाणां विस्तारश्च सम्मिलिताः सन्ति। केरले विजिंजम समुद्रपत्तनात् प्रत्यक्ष निर्यातः आयातश्च अद्य आरभ्यते। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन प्रातः पादोन 11 सेवायाः उद्घाटनं करिष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य झारखण्डे अतिवृष्टिमालक्ष्य रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। ऋतुविभागेन अद्य बिहार छत्तीसगढ़ पूर्व मध्यप्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा पश्चिमोत्तर प्रदेशानां च विभिन्नेषु भागेषु अतिवृष्टेः संभावना पूर्वानुमानिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य आयुष शेट्टी नवदिल्ल्यां आयोजितायां BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां पुरुषाणाम् एकलवर्गस्य प्रथमचरणे विश्वस्य प्रथमक्रमांकितं वर्तमान विजेतारं च चीनदेशीयं शी यू क्यूई इत्येनं पराजित्य विजयम् अवाप्तवान्। तत्रैव पीवी सिंधुः तथा महिलानां युगलवर्गस्य भारतीय युगलं त्रिसा जौली गायत्री गोपीचन्दः अपि द्वितीय चरणे प्रविष्टे। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है।

0: छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि ये निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांगों पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिनमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती हुई भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की परंपरा वर्ष 1950 में शुरू की गई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली के मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज अत्यधिक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वेस्ट चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष सेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को हरा कर एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी अब दूसरे दौर में पहुंच गईं। महिला डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हजार थुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्या और अमृता प्रमथेश तुर्की के एमरेसोन मेज और यासिमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त बना ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation.

0: फसल है बिन किया बचास का और बिया देखा नहीं तो दिमक एक छोटो कीड़ो और बड़ो नुकसान करे जे वो समय पर आप रोकथाम ना करा तो कि एक बहुत बड़ो नुकसान चुके है वो भी हो सके। अब बात करें जी दिमक लागणा का मुख्य कारण की है तो खेत का मां जब सुकोपन ज्यादा हुए जब खुश्क खेत हुए और जक टेम आपने किया का पानी धानी आप खेत में ना दे तो बी टेम किया के इंगा लागने की संभावना ज्यादा रहे और अद्प की गोबर की खाद के बार आपने किसान भाई लोग अब एक घर छू या फिर अकूल डी छू ली जाके सीधी नाक देवे तो बी छू भी खेत का माँ आपने किया दिमक जकिया बा पैदा होनी शुरू हो जाए और खेत में पुराना फसल का अवशेष जक है भी आप यही छोड़ दें आप ना छित्रिया छू आप जुताई ना करा फिर भी दिमक ज्यादा लागने की संभावना रहे और इंग अलावा मिट्टी में जैविक पदार्थों को असंतुलन होने के कारण भी दिमक जकी है बा आपको असर दिखाना शुरू करती है। दिमक फसलों की जड़ांगा माँ तड़ांगा माँ और पौधा का जो अवशेष है बंग माँ नुकसान पुगागे और उत्पादन जो है वो कम कर दे। अपने टेम्परिंग को नियंत्रण करना जरूरी है और अगर टेम्पर अपन नियंत्रण कर लेवा तो इन शुक्र अपा अपनी फसल जो की है बा बचास का। अब बात करें आप इनको नियंत्रण किया करना तो सहसु जरूरी बात तो आ है कि गर्मी का माँ खेत की गहरी जुताई अपन करनी चाहिए इस क्या है कि दिमक का जो अंडा है बांगी जी की कलोनिया है बे नष्ट हो जाए और आपनों खेत जो को है वो दिमक रहित हो जाए। इनका सागे सागे खेत का माँ उचित नमी जो की है बनाई रखनी जरूरी है। खेत ना ज्यादा अपन खुश्क नहीं रखना है सुक्को नहीं रखना है और थोड़ो बहुत पानी जो को है वो टेम टेम पर पलेव जो को है वो अपने दे के रखना चाहिए और नमी अगर माटी में रहेगी तो बटे की अगर दिमक लागने की जो संभावना है वो बहुत कम रहेगी। इनके अलावा भाई लोगों अपन गोबर की जो खाद नाखा भी खाद ने नाखने से पहले अपने अच्छी तरह जांच पर कर लेना जरूरी है व अच्छी सड़ी गली होनी चाहिए और जरूरी बात तो आ है कि गोबर की खाद जो की है कच्ची नए नाग गए अपा की है कि बिंग माँ कोई दलड का माँ या फिर टोआ का माँ बिन्हें तैयार कर गए और बढ़िया तरीके से बिना सड़ा के बिंग कंपोस्ट खाद भी बना सका या फिर अपा केंचू वाली जी की खाद है बाहर ले जाके खेत में नाखांगे तो बीच क्योंकि एक दिमक लागने की जो संभावना है वह बहुत कम हो है क्योंकि थे आ बात भी जानो कि कच्चा गोबर का नहीं दिमक जिकी है बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए तो बीच क्योंकि है कि आपने खेत का माँ गोबर ने खांती खांती या फिर भी खाद ने खांती खांती जो कि दिमक है और बाद में जे आप कोई फसल की बीजांत करांगा तो भी फसल ने खाना शुरू कर देगी और जका फसल का अवशेष है जी आप अभी थोड़े ही दिन पहला कणक की जो की कटाई करी है सरसों की जो की कटाई करी है बिंगा जका अवशेष है वे सहदे ही पड़े रहे तो बंगी जी की जुताई है वह बढ़िया तरीके से करनी जरूरी है तो इसमें अच्छी तरह जुताई करके पानी लगा के फिर एक कर दो बार जुताई कर दे ताकि मिट्टी का माँ जका अवशेष है वे बिल्कुल बारीकी से मिल जाए तो भी शुक्र है कि दिमक ने खाने पीने की मिले को नहीं और दिमक जकी है बाकी बार आप देखे करा डंठल जका है या फिर जका सूखा अवशेष है बंग माँ हुआ है तो वो काम आपने जरूरी करना है कि अगर आपने खेत का माँ प्राणी फसलों का जका अवशेष अगर बचेड़ है तो बंग अवशेष जका है वे हटाना जरूरी है। सागे साग अपन नीम की खड़ी को जो प्रयोग है वो अपन खेत का माँ करना चाहिए क्योंकि बुआई के टेम नीम की जो खड़ी है वह 100-150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप खेत का माँ इस्तेमाल करेंगे तो भी शुकी है का आपने खेत का माँ दिमक को जो प्रकोप है बहुत कम होगा और दिमक जिकी है अपनी फसल ने नुकसान कम पुगावेगी। अब बात करें जैविक नियंत्रण के बारे का माँ तो ब्यूवेरिया बेसियाना नाम को जो को जैविक फफूंद है इनको आप अपने खेत का माँ कर सका और रासायनिक नियंत्रण खातर भी आप अपना जो आस पास कृषि वैज्ञानिक है विशेषज्ञ है वहां से जानकारी लेगे और आप अपनी खेत का माँ दिमक को जो प्रकोप है वो कम करना चाहिए सा। जब भी आपने यह लगा कि आपने खेत का माँ अपनी जी की फसल है बा सुकन ला रही है पीलीपन ला रही है या फिर उखेड़ो अपन यह लगा है कि अपनी फसल में आ गयो तो समझाना चाहिए कि कठन कठे दिमक को भी असरिंग माँ हो रही है तो अपन भी को तुरता फुर्त नियंत्रण जो को है वो करना जरूरी है सा। तो आम बातों को पूरा ध्यान रख गए आप अपनी फसल ने दिमक से बचा सका बढ़िया उत्पादन ले सका पर अब खेत का काम धंधा और भी करना है सा हूँ चालू राम राम सा राम राम।
1: दीमक से खेत को कैसे बचाएं, इस विषय पर आप जानकारी सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीहर वास्ते में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लोक भजन में भंवर लाल सोलंकी और उनके साथियों को। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे लंका कांड में भाग संख्या 338 को। कलाकार हैं सुरेश वाडेकर और रविंद्र साठे।

रावण की आसुरी सेना का प्रायः विनाश हो चुका है। श्री राम और रावण का युद्ध सन्निकट है। रावण अपने बंधु बांधवों खर दूषण विराट बाली आदि योद्धाओं का वध करने वाले तपस्वी को ललकार रहा है कि वो उन जैसा नहीं है। वो जगत प्रसिद्ध रावण है जिसका बल और पराक्रम अनंत है। हे तपस्वी, आज तुम यदि युद्ध से भाग नहीं गए तो मैं अपना सारा वैर निकाल लूंगा। तुमने मेरे मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी वध किया है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारा पाला रावण से पड़ा है। श्री राम ने उसे ललकारा कि व्यर्थ की बकवास न कर, अब वो अपना पराक्रम और पौरुष दिखाए। बोले, संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब आम और कटहल की तरह। एक केवल फूल देते हैं, दूसरे फूल और फल दोनों देते हैं, और तीसरे प्रकार के पुरुष कटहल के समान केवल फल देते हैं। इसी प्रकार एक केवल डींग हाँकते हैं, दूसरे कहते और करते हैं, और तीसरे केवल करते हैं कहते नहीं। श्री राम की इस उक्ति से क्रुद्ध होकर रावण ने वाण छोड़ना प्रारंभ किया, किंतु श्री राम के अग्निवाण से वे भस्म होते गए। रावण के एक वाण से अपने सारथी को आहत होता देख श्री राम ने क्रोध में आकर अपने धनुष पर टंकार की, जिसका नाद सुनकर महल में मंदोदरी तथा अन्य रानियों के हृदय कांप गए। समुद्र पर्वतों तथा पृथ्वी पर चारों ओर भय और आतंक व्याप्त हो गया।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना लंका कांड में भाग संख्या 338 को। कलाकार थे सुरेश वाडेकर और रविंद्र साठे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

आपका साथी हाजिर है ये प्रोग्राम लेकर। कुछ विषयों पर आपसे हम बातचीत करेंगे और सुनवाएंगे कुछ फिल्म गीत। बात करते हैं सदाचार की। कहते हैं कि यदि मनुष्य का कोई सबसे अच्छा मित्र हो सकता है तो वो है सदाचार, क्योंकि ये कभी आपको धोखा नहीं देगा और आजीवन एक पूंजी की तरह आपके साथ रहता है। सदाचार का अर्थ है अपने बड़ों की बात मानना, अपने व्यवहार में मधुरता और दूसरों का निस्वार्थ भाव से सेवा करना। एक सदाचारी व्यक्ति सदैव जीवन में नाम कमाता है और उसे मरणोपरांत भी याद किया जाता है। सदाचार आपके चरित्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यह आपके जीवन को तो सुंदर बनाता है ही, साथ ही आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। एक अच्छे आचरण वाले व्यक्ति की पूछ हर जगह होती है। कई बार किसी का आचरण कोई ऐसा कार्य करवा देता है कि जिसकी उम्मीद न हो। हर किसी को ये जरूर सीखना चाहिए, एक सदाचारी सदैव सभी प्रकार के बुरे कर्मों जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, इन सभी से दूर रहता है और उसका जीवन सदैव सुखमयी होता है। ये कभी अपने आप में घमंड नहीं आने देता और बेहद निर्मल और शांत स्वभाव का बनाता है सदाचार। हम कह सकते हैं कि एक सदाचारी अच्छे आचरण का प्रत्यक्ष उदाहरण होता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, वे कभी पीछे नहीं भागता और डटकर मुसीबतों का सामना करता है। सदाचार कभी आपको मुसीबत में नहीं डालता, इसलिए अपने बच्चों को सदाचार अवश्य सिखाएं, उन्हें सदैव इसका पालन करने की सीख दें। उन्हें समाज के कल्याण का हिस्सा बनना चाहिए और अपने जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना मात्र न रहकर जनहित में कुछ समय देना भी सिखाएं। यूं तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, इसलिए आप भी इन बातों का प्रयोग में लाएं और जीवन में कुछ अलग करके जाएं। यह भी हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। आइए सुनवाते हैं आपको एक गीत मनाडे की आवाज में, फिल्म बादल से। गीतकार जावेद और संगीतकार उषा खन्ना।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: श्रोतों, बात करते हैं घरेलू बचत का महत्व, जिसका अर्थ होता है खर्च कम करके कुछ पैसे संजोना या बचा लेना। बचत करने से हम भविष्य में आवश्यकता पर पैसे का उपयोग कर सकते हैं। बचत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक सुरक्षा होती है। बचत करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले, जब हम पैसे बचाते हैं तो हम आर्थिक संकट के समय में पैदा होते हैं। दूसरी, बचत से हम अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई, घर खरीदना या अपना व्यवसाय शुरू करना। बचत करने के लिए हमें रोज़मर्रा के खर्चों से बचना चाहिए और अपनी जो भी पसंदीदा है उसको कुछ कम करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाना चाहिए। ये हमें जिम्मेदार संरचना और आर्थिक कार्यशाला प्रदान करता है, और हम कह सकते हैं कि बचत एक अच्छी आर्थिक आदत है जो हम सभी को अपनानी चाहिए, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित और खुशहाल बना रहे। ये होते हैं बचत के फायदे हमारे जीवन के लिए, हमने अपने परिवार के लिए,

एक और गीत आप सभी के लिए, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है स्वर्ग से सुंदर। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। बात करते हैं उस्ताद योजना की। हमारा भारत अपनी परंपराओं और संस्कृति के लिए जाना जाता है। हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पारंपरिक कलाओं, कौशल और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन प्रतिस्पर्धी बाजार और वैश्वीकरण के प्रभाव के साथ साथ कुशल कारीगरों की बिगड़ती सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण युवा पीढ़ी इन कौशलों को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। भारत सरकार का दृढ़ विश्वास है कि इन कलाओं और शिल्प कलाओं का संरक्षण आवश्यक है। कुटीर और लघु उद्योगों की रीढ़ माने जाने वाले पारंपरिक कलाओं और उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने, बेहतर बाजार संपर्क स्थापित करने, ब्रांडिंग को मजबूत करने और ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसलिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक नई योजना उस्ताद योजना शुरू की है, जो पूरी तरह से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सन 2014-15 से लागू की जाएगी। तो ये लागू हो चुकी है उस्ताद योजना, हमारे बाज़ार को मजबूत करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और कौशल को अपने उड़ान तक पहुंचाने के लिए ये योजना है। एक और गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म हाथी मेरे साथी से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

बिल्कुल श्रोताओं, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। ये प्रेरणादायक पंक्ति हमें मेहनत और कर्म के महत्व को दर्शाती है। जीवन में सफलता और सम्मान पाने के लिए कर्म करना सबसे जरूरी है, और बिना प्रयास के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। बिना मेहनत के भाग्य कुछ नहीं देता। एक और गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

कार्यक्रम सुप्रभात आप सुन रहे थे आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉर्डन सिटी चैनल से अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है, और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स

0: पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससीसी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत

0: करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री VD सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
2: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम स्मिथी एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
3: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला पेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला

0: गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम, 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद एनटीए ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्य ने नागपंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। झारखंड गवर्नमेंट कैंसल्स JSSC CGL एग्जामिनेशन आफ्टर 24-डे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। ऑल्सो कैंसल्स ऑल अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द प्राइवेट एजेंसी TDPL. US President Donald Trump praises India's voter ID system, hails it as a model for stricter US election rules. India to host 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Indian Army Chief General Dhiraj Seth conferred rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podel in Kathmandu. IMD issues red alert for a very heavy rainfall in Jharkhand today. And Ayush Shetty stuns world number one and defending champion Shi Yu Qi in first round of men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by the private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. We have a report.
4: The Jharkhand government

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए एक मिसाली नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वुजराए माहौलियात के 12वें इजलास की मेज़बानी करेगा। भारतीय फ़ौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फ़ौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी यू की को शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। झारखंड हुकूमत ने रियासत में तलबा के 24 दिन तक जारी रहने वाले एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को मनसूख कर दिया है। हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी रद्द कर दिए हैं। इस ऐलान के बाद रांची में एहतजाज के मकाम पर तलबा ने जश्न

0: मनाया। ताहम सीबीआई जांच का मुतालिबा अभी पूरा नहीं किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड हुकूमत ने जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान और टीडीपीएल एजेंसी के जरिए मुनाकिद किए गए तमाम मुसाबकती इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला किया है। इसके अलावा हुकूमत ने 2014 से अब तक मुनाकिद किए गए जेपीएससी और जेएसएससी के भर्ती इम्तिहानात की तहकीकात का भी ऐलान किया है। यह फैसला वज़ीर आला हेमंत सोरेन की सदारत में मुनाकिदा काबीना की खसूसी मीटिंग में लिया गया। एहतजाज करने वाले तलबा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस फैसले का खैर मकदम किया और मिठाइयां तकसीम करके और एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। हुकूमत ने 2014 के बाद से जेपीएससी और जेएसएससी के जरिए किए गए भर्ती के अमल की जांच करने और इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात की सिफारिशात पेश करने के लिए आईएएस ऑफिसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है। इस दौरान रियासती वजीर दीपिका पांडे सिंह, वजीर सेहत इरफान अंसारी और रुकन असम्बली जयराम कुमार ने सदर अस्पताल का दौरा किया और देवेंद्र नाथ महतो समेत एहतजाज करने वाले दीगर तलबा की भूख हड़ताल जूस पिलाकर खत्म कराई। देवेंद्र नाथ महतो ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस फैसले से उनके अहम मुतालबात पूरे हो गए हैं। जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने भी ऐलान किया है कि वो फिलहाल अपना एहतजाज मुअत्तल कर रहा है। तलबा रहनुमा रविंद्र पासवान ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। ताहम उन्होंने कहा कि रिफॉर्म मंच मुबैना बेजाब्तियों की सीबीआई जांच का हुक्म जारी होने तक अपना एहतजाज जारी रखेगा। हुकूमत के फैसले के बाद उन उम्मीदवारों में भी एहतजाज शुरू हो गया जिन्हें पहले ही जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान के जरिए मुलाजमत के लिए मुंतखब किया जा चुका है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे सख्त अमरीकी इंतखाबी जाब्तों के लिए मिसाल करार दिया है। जनाब ट्रंप ने भारत के इंतखाबी तरीक़ेकार को इंतखाबी जांच पड़ताल के लिए मिसाली नमूना करार दिया और अमरीका में वोटर शनाख्त से मुतालिक ज़रूरतों में सख्ती बरतने की वकालत की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब ट्रंप ने भारत के आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ अपनी हालिया बातचीत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कुमार ने सवाल पूछा था कि अमेरिका में मजाज तस्वीरी शनाख्ती दस्तावेज के बगैर इंतखाबात किस तरह मुनाकिद होते हैं। जनाब ट्रंप ने इस तबसे के जरिए अपने उस मुतालबे को दोहराया कि अमरीकी कांग्रेस को सेफ गार्ड अमरीकन वोटर एलिजिबिलिटी सेव अमरीका एक्ट को मंजूर करना चाहिए। इस मुजवदा कानून के जरिए वफाकी इंतखाबात में वोटिंग के लिए सख्त ज़रूरतें मुतारफ़ कराने की तजवीज़ है। इसके तहत राय दहिंदगान को वफाकी इंतखाबात के लिए रजिस्टर करते वक्त अमरीकी शहरियत का दस्तावेजी सबूत और हुकूमत की जानिब से जारी करदा तस्वीरी शनाख्ती कार्ड फ्राहम करना होगा। वाइट हाउस ने इस कानून को अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ अमरीकी शहरियों की जानिब से राय दहिंदगी को यकीनी बनाने वाला कदम करार दिया। अमरीकी इंतजामिया ने कहा कि भारत और ब्राज़ील ने वोटर शनाख्ती कार्ड को बायोमेट्रिक डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया है जबकि अमरीका शहरियत के लिए बड़े पैमाने पर खुद से तस्दीक पर इन्हिसार करता है। जनाब ट्रंप ने भारत के आम इंतखाबात के वसी दायरे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के हालिया आम इंतखाबात में तकरीबन 462 मिलियन अफराद ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। दिल्ली से कुमोदी पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों के 12वें इजलास की मेज़बानी करेगा। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत ने कहा कि ये इजलास अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, इत्तफाक राय को फ़रोग देने और माहौलियात से मुतालिक बाहमी तआवुन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के इजलास की सदारत माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव करेंगे। ये इजलास भारत की 2026 ब्रिक्स सदारत के वसीतर मौजू इस्तेहकाम, इख्तिरा, ताउन और पायदारी की तश्कील के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। भारत ने ब्रिक्स माहौलियात वर्किंग ग्रुप के तहत खसूसी तवज्जो के लिए 4 तरजीही शोबों की निशानदेही की है। इनमें पायदार तर्ज जिंदगी को फ़रोग देना, शजरकारी, जंगलात में आग पर काबू पाने का इंतजाम और कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत, सर्कुलर इकनॉमी और आबहवा की तब्दीली के असरात से मुताबिकत पैदा करना शामिल हैं। ब्रिक्स माहौलियात वर्किंग ग्रुप का क़याम 2015 में मॉस्को में मुनाकिद होने वाले ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के पहले इजलास के दौरान अमल में आया था। इसका मकसद ब्रिक्स मुल्कों के लिए माहौलियाती तरजीहात से मुतालिक अहम उमूर पर तवज्जो देने, तजर्बात का तबादला करने, बेहतरीन तरीक़ेकार शेयर करने और रुकन ममालिक के दरमियान इज्तिमाई इक़दामात को मजबूत बनाने के लिए

0: प्लेटफॉर्म फ्राहम करना था। नई दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को कल काठमांडू के शीतल निवास में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। इस मौके पर नेपाल के नायब सदर राम सहाय प्रसाद यादव, वजीर खारजा शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के सफीर नवीन श्रीवास्तव और नेपाली फौज और हुकूमत के आला ओहदेदार मौजूद थे। जनरल सेठ नेपाल के अपने हमनसब जनरल अशोक राज सिगडेल की दावत पर इतवार को सरकारी दौरे पर नेपाल पहुंचे। एजाजी जनरल का ओहदा देने की ये रिवायत साल 1950 से जारी है, जिसके तहत नेपाल और भारत एक दूसरे की फौज के सरबराहान को एजाजी जनरल का ओहदा अता करते हैं। जनरल सेठ ने नेपाली फौज के सदर दफ्तर में जनरल सिगडेल से भी मुलाकात की। दोनों फौजी सरबराहों ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। जनरल सेठ ने भारतीय सिफारतखाने में सफीर नवीन श्रीवास्तव से भी मुलाकात की, जिसमें नई दिल्ली और काठमांडू के दरमियान जामे ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर गुफ्तगू हुई।

0: सदर दफ्तर में जनरल सिगडेल से भी मुलाकात की। दोनों फौजी सरबराहों ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। जनरल सेठ ने भारतीय सिफारतखाने में सफीर नवीन श्रीवास्तव से भी मुलाकात की, जिसमें नई दिल्ली और काठमांडू के दरमियान जामे ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर गुफ्तगु हुई। केरलम में विजिंजम सी पोर्ट से रास दरामदात और बरामदात आज से शुरू हो जाएंगी। केरलम के वजीर आला वी डी सतीसन सुबह 11:15 इन खिदमात का इफ्तिताह करेंगे। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: केरलम में विजिंजम सी पोर्ट से रास दरामदात और बरामदात आज से शुरू हो रही हैं, जो कि बंदरगाह के कामकाज के नए मरहले का आगाज होगा। अब तक विजिंजम बुनियादी तौर पर बैन अल-अक़वामी कार्गो हब के तौर पर काम करता रहा, जहां बड़े जहाज़ों जिन्हें मदरशिप्स कहा जाता है पर आने वाले कंटेनर को आगे के सफ़र के लिए छोटे जहाज़ों पर मुंतकिल किया जाता था। कस्टम्स के आला कमिश्नर ने 17 जुलाई को दरामदात और बरामदात की इजाज़त दी। शुरुआत में विजिंजम बंदरगाह पर दरामदात और बरामदात दोनों के लिए सिर्फ फुल कंटेनर लोड और FCL कार्गो ही इस्तेमाल होंगे। इस बंदरगाह को गुज़श्ता साल 2 मई को मुल्क के नाम वक्फ किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलुर्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजर सानी SIR के लिए साल 2002 को बुनियाद बनाने से मुतालिक इंतखाबी कमीशन के फैसले में मदाखलत करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने कल एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से दायर की गई मफादी आम्मा की अर्जी को खारिज कर दिया। इस अर्जी में चुनाव कमीशन को यह हिदायत देने की दरख्वास्त की गई थी कि सिक्किम में जारी SIR के लिए साल 2002 के बजाय साल 1993 को बुनियाद बनाया जाए। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन ने मुख्तलिफ रियासतों में जारी SIR के लिए यकसा तौर पर 2002 को बुनियादी साल मुकर्रर किया है, क्योंकि आखिरी मरतबा ऐसी नजरसानी उसी साल की गई थी। ताहम बेंच ने कहा कि दरख्वास्त गुजार मुनासिब रियायत के लिए इंतखाबी कमीशन से रुजू कर सकता है। तालीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आला तालीम के महकमे के सेक्रेटरी, इम्तिहानात मुनक्किद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA और दीगर आला अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। वजीर मौसूफ़ ने इम्तिहानात से मुतालिक जाब्तों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। उन्होंने राजदाराना अमली सरगर्मियों, अलग थलग कमरों, एयर गैप्ड सिस्टम्स यानी बाहरी नेटवर्क से मुनक़िद निज़ाम, डिवाइस जमा करवाने जैसे जाब्तों पर जंगी पैमाने पर अमल किए जाने की तलकीन की। NTA से कहा गया कि वह सभी इम्तिहानात के अमल की तफसीली जांच करे और इसे दुरुस्त करने के लिए किए गए मुतालिका इकदामात के बारे में रिपोर्ट दाखिल करे। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज झारखंड में शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने बिहार, छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरकी उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, सिक्किम, शुमाली मशरकी रियासतों कराईकल, पुडुचेरी, केरलम और माहे में जुमेरात तक शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में अगले 2 से 3 दिन के दौरान गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ते 24 घंटे के दौरान रियासत भर में बेशतर मकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। कई मकामात पर बारिश के सबब मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में कल रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मंडी ज़िले के कटोला में सबसे ज़्यादा 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। मूसलाधार बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से तकरीबन 87 सड़कें बंद हैं, 80 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि तकरीबन 994 करोड़ रुपये की सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: इस दौरान मौसमियात के महकमे ने आज उत्तराखंड के गढ़वाल खित्ते के पहाड़ी जिलों में इंतहाई शदीद बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक रियासत में बारिश का सिलसिला जुमे के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि किसी शख्स को चढ़ते सूरज के सामने नहीं झुकना चाहिए और यही असल शुजात है। वजीर आजम ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए ये बात कही। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन चीन के शी यू की को मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में हरा दिया।

0: आयुष ने शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पर मुश्तमिल खवातीन की डबल्स की जोड़ी और मायानाज खिलाड़ी पीवी सिंधु भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। खवातीन के सिंगल्स में सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबेल को 21-7 और 21-11 से शिकस्त दी। खवातीन के डबल्स में ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को सीधे सेटों में 21-9 और 21-13 से हरा दिया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत की सदारत में मुनक़िदा ब्रिक्स माहौलियाती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि इस मीटिंग में आलूदगी, हयातियाती तनवु, शजरकारी और सर्कुलर मईशत के शोबे में तआवुन को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया गया। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि योम आज़ादी से कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ रियासतों में ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्द ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए इसे तबाह कर दिया है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी वजीर ममलकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है कि तकनीक पर मबनी पेंशन खिदमात की फराहमी से माली वसाइल में नुमाया बचत हुई है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए तमाम दीगर भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए मिसाल नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वुज़राए माहौलियात के 12वें इजलास की मेज़बानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी युकी को शिकस्त दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड के 16.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर। यह आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉर्डन सिटी चैनल है। श्रोताओं, आइए सुने भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के हमारे कलाकार हैं अनूप झलोटा और उनके साथी।

0: भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। आज के हमारे कलाकार थे अनूप झलट और उनके साथी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। राज्य विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। किसान रजिस्ट्री को एमएसपी पर होने वाली खरीद प्रक्रिया से जोड़ने की प्रक्रिया और उर्वरक वितरण प्रणाली को जल्द ही प्रदेश भर में लागू किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री पर 2 महीने के लिए रोक लगाई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि यह बैठक विभिन्न देशों के बीच पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। साथ ही इस दौरान पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण विमर्श और चर्चाएं होंगी। भारत ने पहली बार देश के घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों पर एक विशेष मार्गदर्शिका जारी की है। इसे मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन यूएनसीसीडी के कॉप 17 सत्र में जारी किया गया। मार्गदर्शिका में भारत के घास के मैदानों, सवाना मरुस्थलों और अन्य खुले प्राकृतिक क्षेत्रों की जैव विविधता, पारिस्थितिकी महत्व और सामाजिक आर्थिक उपयोगिता को रेखांकित किया गया है। सत्र में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि घास के मैदानों और झाड़ियों वाले क्षेत्रों को लंबे समय से पेड़ों की अनुपस्थिति के आधार पर सामान्यतः कमतर आंका जाता है, जबकि ये क्षेत्र जैव विविधता

0: आजीविका और जलवायु अनुकूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्री यादव ने अजमेर में अपने बचपन का उल्लेख करते हुए पारंपरिक ओरण और गोचर क्षेत्रों को भी याद किया। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में यह बैठक विधानसभा में आज सुबह 11 बजे से आयोजित होगी। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बैठक में 16वीं विधानसभा के छठे सत्र को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चलाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी दलों के विधायकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक से आपसी संवाद, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलता है, साथ ही जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार होता है। प्रदेश में जिला क्रय विक्रय सहकारी समितियों की कार्य प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। इसमें कोटा पहले, कोटपूतली बहरोड दूसरे और चित्तौड़गढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में परबतसर पहले, खींवसर दूसरे और सांगोद तीसरे स्थान पर है। सहकारिता विभाग के शासन सचिव और रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने सचिवालय में सहकारी संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने समितियों के गोदामों की जियो टैगिंग कराने और उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही स्थानीय उत्पादों और मिलेट उत्पादों की बिक्री बढ़ाने को कहा। एक अन्य बैठक में सहकारिता विभाग द्वारा कॉन्फेड के मेडिकल स्टोर खोलने का निर्णय लिया गया है। श्री शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों को सभी जरूरी दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की दिशा में ये काम किया जा रहा है।
1: केंद्र पे दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी संख्या 690 है और इसको कालांतर में बढ़ा के हम 2000 इसकी संख्या करना चाहते हैं, जिससे कि कोई भी अगर मरीज यहाँ आता है तो उसको सभी दवाइयाँ मिल जाए, उसको इधर उधर ना घूमना पड़े। और इसमें हमारी बाध्यता ये है कि जो जनऔषधि केंद्र से दवाइयाँ आती हैं वही दवाइयाँ हम यहाँ पे सेल करते हैं जो भारत सरकार से प्राप्त होती है। तो इसको पूरक के रूप में यहाँ पे कॉन्फेड की हम 6 शॉप्स विकसित कर रहे हैं, जहाँ पे जो दवाई यहाँ नहीं मिलती तो वहाँ से ले सकेगा, जिससे कि जो पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पूरा ऑनर हो सके और उसको सारी दवा मिल सके। इसमें हम ये भी पैकेज डेवलप कर रहे हैं कि जो ओल्ड एज के लिए जो मेडिसिन होती है उसका पैकेज भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो 400-500 रुपए में महीने भर की आपको डायबिटीज की भी, उसमें ब्लड प्रेशर की भी, कोलेस्ट्रॉल की भी, हार्ट की भी, वो सभी दवाइयां पूरे पैकेज के रूप में मिल सके, वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में कृषि क्षेत्र की डिजिटल मजबूती के लिए कृषि स्टैक को गति देने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय बैठक में कृषि स्टैक आयुक्तालय स्थापित करने और किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं में किसान आईडी अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को सहकारिता विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही किसान रजिस्ट्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया और उर्वरक वितरण प्रणाली को जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू करने पर सहमति बनी। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 87,44,000 किसानों की किसान रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। जयपुर जिले के प्रगतिशील किसान मोतीलाल को जैविक और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में किसान ब्रांड एम्बेसडर और ट्रेनर बनाया गया है। कृषि विभाग ने उनकी खेती के अनुभव और नवाचार को देखते हुए ये जिम्मेदारी दी है। अब वे प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग की जानकारी देंगे। वे किसान प्रशिक्षण कार्यशालाओं और किसान संवाद कार्यक्रमों में अपने व्यावहारिक अनुभव साझा करेंगे। करौली जिले में जल संरक्षण और जल उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों को गति दी जा रही है। बारिश के पानी को सहेजने, पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं हर घर जल पहल के तहत ग्रामीण परिवारों तक पेयजल पहुंचाने की दिशा में भी काम हो रहा है। अधिक ब्यौरा

0: हमारे संवाददाता से।
1: जिले में 120 जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन संरचनाएं पूरी की गई हैं, 33 से अधिक पारंपरिक जल स्रोतों का नवीनीकरण और 62 वाटर सेड विकास कार्य किए गए हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। जिले के पांचना बांध, गंभीर नदी और स्थानीय तालाब बांधों में जल संरक्षण से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की दिशा में किए जा रहे प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को और मजबूत कर रहे हैं। बांके व्यारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रदेश में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री और वितरण पर 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने जुलाई और अगस्त में लिए गए नमूनों की जांच के बाद ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही असुरक्षित खाद्य पदार्थों के नमूने पाए जाने पर विभिन्न जिलों के 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। विभाग के अनुसार इनमें घी, मसाले, नमकीन, दूध, पनीर, मावा और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल शामिल हैं। विभाग ने आमजन से खाद्य पदार्थ खरीदते समय ब्रांड, बैच नंबर और लेबल की जांच करने की अपील की है। साथ ही संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना देने का आग्रह किया गया है। राजस्थान पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली साइबर ठगी से बचने के लिए आमजन को सतर्क किया है। पुलिस ने कहा है कि ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और फर्जी नोटिस या वारंट दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। पुलिस के अनुसार ऐसी कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती है और भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। राज्य विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। किसान रजिस्ट्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया और उर्वरक वितरण प्रणाली को जल्द ही प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री पर 2 महीने के लिए रोक लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप के न्यूज जोन एयर ऐप पर। यह आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। आज के हमारे कलाकार हैं रामचरण दास।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मरुमंगल, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से।

श्रोताओं, ये लोक रसना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति रामचरण दास के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। आज के हमारे कलाकार थे रामचरण दास। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला गीत लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं। यह गीत इस बात के साथ, तुमसे मिलकर न जाने क्यों ये दिल को एतबार हुआ, तुमसे मिलकर न जाने क्यों ये दिल को एतबार हुआ, पहली पहली बार ही हमें तुमसे ही प्यार हुआ।

श्रोताओं, आइए एक बार फिर से लता मंगेशकर और शबीर कुमार को सुनते हैं फिल्म बाजी से। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। अगला गीत फिल्म हिम्मत वाला से, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले की। गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीतकार बप्पी लहरी।

0: श्रोताओं, आइए सुने अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को फिल्म बेटा से। गीतकार समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।
1: आउच।

श्रोताओं, आइए सुने लता मंगेशकर और शो मोहम्मद रफ़ी को फिल्म दो रास्ते से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने साथी कुंदन कटारिया का आपका साथी हाजिर है ये फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आज के फनकार के तहत। आज के हमारे फनकार हैं गीतकार गुलजार, जिनका आज जन्मदिवस है। इन्हीं के लिखे हुए गीत आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूं गम, दिल में कुछ यूं संभालता हूं गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देखकर तसल्ली हुई, आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। पेड़ पर पक गया है फल शायद, पेड़ पर पक गया है फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई। देर से गूंजते हैं सन्नाटे, देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई। ये पंक्तियां हैं गीतकार गुलजार की, जो आज के हमारे फनकार हैं। 18 अगस्त 1936 को उनका जन्म हुआ। उनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें हम सभी प्यार से गुलजार कहते हैं। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार होने के साथ ही एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और नाटककार। इनकी रचनाएं हिंदी, उर्दू और पंजाबी में। गुलजार को वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2009 में डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित फिल्म स्लमडॉग मिलीनियर में उनके द्वारा लिखे गए गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। इसी गीत के लिए गुलजार को ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2013 के लिए गुलजार को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च

सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। ऐसे हैं गीतकार गुलजार, आज हम सभी उनको उनके लिखे हुए गीतों से एक गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं उनके जन्मदिवस पर। एक फिल्म उनकी घर आई थी जिनका गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार गुलजार और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-22233।
2: श्रोता, हम बात कर रहे हैं गीतकार गुलजार की, आज के फनकार के तहत। उनके जीवन परिचय की बात करें तो पश्चिमी पंजाब के झेलम जिले, जो कि अब पाकिस्तान में है, के दीना गांव में 18 अगस्त 1936 को जन्मे संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको हम सभी गुलजार के नाम से बुलाते हैं, लेखक, निर्माता, निर्देशक के रूप में भी बॉलीवुड में अपना विशेष योगदान दिया है। बचपन के दिनों से ही शेरो शायरी का शौक रखने वाले गुलजार अंताक्षरी के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते थे। उन्हें गीत संगीत के प्रति खासी रुचि थी। वे रविशंकर और अली अकबर खान के कार्यक्रम सुनने के लिए जाया करते थे। वर्ष 1947 में हिंदुस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार अमृतसर चला आया। इसके बाद अपने सपनों को नया रूप देने के लिए गुलजार मुंबई आ गए, लेकिन सपनों की नगरी में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन यापन के लिए उन्हें एक मोटर गैराज में भी मैकेनिक की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे हैं गीतकार गुलजार। एक और गीत फिल्म आंधी से लता और किशोर की आवाज़ में, गीतकार गुलजार और संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है

0: इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोता, आपसे बात हो रही है गीतकार गुलजार पर। उन्होंने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1961 में बॉलीवुड के महान निर्देशक बिमल राय के सहायक के रूप में की। गुलजार ने ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर भी काम किया। गुलजार को सहायक निर्देशक के रूप में देखते हुए उनकी अपनी क्लासिक फिल्म बंधनी के लिए गीत लिखने को कहा। गीतकार के रूप में गुलजार ने पहला गाना मेरा गोरा अंग लई ले वर्ष 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंधनी के लिए लिखा। जब तक बंधनी आई उससे पहले बलराज सहनी की फिल्म काबुलीवाला का प्रदर्शन हो गया। इस फिल्म के गीतों को भी गुलजार ने ही लिखा था। काबुली

वाला मैं उनका लिखा गाना, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, और गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ से, ने उन्हें सिर्फ श्रोताओं और दर्शकों की नज़र में उभार दिया था। ऐसे हैं गीतकार गुलजार। एक और गीत फिल्म गोलमाल से, आवाज़ किशोर कुमार की। गीतकार गुलजार और संगीतकार आरडी बर्मन।

0: मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: गीतकार गुलजार, काबुलीवाला के बाद उन्होंने कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखकर जन जन के हृदय के तार झनझनाए और उन्हें भाव विभोर कर फिल्मी गीत गंगा को समृद्ध किया। गुलजार ने वर्ष 1971 में फिल्म मेरे अपने के जरिए निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। अपने समय की ट्रेजडी क्वीन के नाम से विख्यात मीना कुमारी के साथ उन्होंने विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा को इस फिल्म में पेश किया था। गुलजार ने अपनी फिल्मों में अनगिनत अभिनेत्रियों को बेहतरीन किरदारों में पेश किया। एक और फिल्म आनंद, जिसके गीत आपको सुनवाते हैं, गुलजार के लिखे हुए गीत, आवाज मुकेश की, संगीतकार सलील चौधरी।
3: मैंने

0: सपने।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800

0: 8640420233।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आज के फनकार। गीतकार गुलजार के लिखे हुए कुछ फिल्मी गीत और उनके जीवन पर हम आपसे बात कर रहे हैं। गुलजार एक रेशमी एहसास का नाम है जिनकी कविता और गीतों की हरारत का एक सिरा उन अफसानों से होकर गुजरता है जो विभाजन की त्रासदी से निकली है। उनकी कहानियों में लकीरें दरअसल उसी दर्द का फलसफा बयां करती है जिस तकलीफ को लिए हुए गुलजार साहब रातों रात दीना पाकिस्तान अपनी जमीन छोड़कर चले आए थे। फिल्म माचिस का वो गीत याद कीजिए, छोड़ आए हम वो गलियां। ऐसे ही जज्बातों से निकलकर गुलजार ने अपने शायर किरदार की वो रूह जमा की है जो अपनी जलावतनी से और भी अधिक आग पाती है। एक बिसरा दिए गए शहर का ऐसा पीछे छूट गया सा बचपन जो गुलजार की हर दूसरी कविता में उन्मान की तरह आया है। ऐसे हैं गीतकार गुलजार। एक और गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म लेकिन से, गीतकार गुलजार।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: गीतकार गुलजार की अधिकांश कहानियां हो या फिल्मी गीतों की अंतर कथाओं की पड़ताल, हर जगह छिजते जाते समय और समाज से तालमेल बनाने की कोशिश ही जैसे उनकी लेखकी का सबसे जरूरी कर्तव्य बोध रही है। फिर भी वो सारी जदोजहद गीतों और कहानियों की अदायगी से आवाज पाती है। उनकी इस तरह की महत्वपूर्ण कहानियों में रावी पार, खौफ, फसल, बंटवारा और दीना को याद किया जा सकता है। ऐसे हैं गीतकार गुलजार। एक और गीत अनूप घोषाल की आवाज में, फिल्म मासूम से, गीतकार गुलजार और संगीतकार RD बर्मन।

0: कि आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: गीतकार गुलजार लिखते हैं, जिक्र जहलम का है, बात है दीने की, चांद पुखराज का, रात पश्मीने की। ऐसी ही कहानियों से होते हुए वो समाज की सबसे दुखती नस पर अपने कलम की धार रख देते हैं, जो आम जीवन से भी कई दफा नज़रअंदाज रहता आता है। दुख के इस महासमुंदर से जूझते हुए गुलजार का शायर कई मर्तबा फिल्मी गीतों की उस संवेदना में उतरता है, जिसके लिए प्रेम को प्रेम की तरह नहीं बल्कि देह के पहरन की मानिंद दुख समेटने के लिए रचा गया है। ऐसे हैं गीतकार गुलजार। एक और गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म परिचय से, गीतकार गुलजार और संगीतकार RD बर्मन।

गीतकार गुलजार। किताब इजाज़त और लिबास जैसी फिल्मों के कथानकों की तरह जीवन में चले आए हुए रिश्तों के गहरे दागे आज कहीं दरक गए हैं। भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर रची गई नो मैंस लैंड की अनेकों कहानियां आज अधूरी छूट गई हैं, जिनकी खातिर एक शायर के भीतर का अफसानीगार जैसे तड़पता है। गीतों के पतंग की डोर से कटा कहानियों का कोई सूफी दरवेश आप यार जुलहे से कुछ अशार पढ़कर इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। राख को भी कुरेद कर देखो, अब भी जलता हो कोई पल शायद। कितना अरसा हुआ कोई उम्मीद जलाए, कितना अरसा हुआ किसी कंदील पर जलती रोशनी रखे। एक और गीत लता और भूपेंद्र की आवाज़ में, फिल्म किनारा से। गीतकार गुलजार और संगीतकार आर डी बर्मन।

प्रेम, दोस्ती, विश्वास, रिश्ते, अधूरेपन, दर्द, रूहानी, एहसास, पीड़ा, मनुहार, उदासी, भय, उत्साह, उमंग, उल्लास, तलीनता, सभी तरह के मनोभावों के कवि के रूप में गुलजार को पहचान मिली है। वो अपने शायर का एक सिरा पकड़कर दूसरे से मुखातिब रह सकते हैं। वो विचार के इस या उस तरफ खड़े नए भी हों तो भी गहरे मानवीय सरोकारों से हम सबको भीगते रहने के सौजन्य रच सकते हैं। उनका होना इसी अर्थ में एक शायर, गीतकार, लेखक और अफसाना लिखने वाले के किरदार में अत्यंत प्रामाणिक बन जाया करता है। इसी एहसास के तहत ये जज्बा भी कायम रहता है कि गीत लिखते वक्त उनके शायर से मुलाकात होती है तो अफसाने के समय कहीं गहरे गीतकार गुनगुना रहा होता है। हर उम्र की दहलीज पर वय को परे खिसकाते हुए और बिल्कुल नई पीढ़ी से उसकी ही शब्दावली में संवाद को तत्पर गुलजार साहब की कलम से ये कहने का हौसला रखती है। ऐसी उलझी नज़र उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत

0: घुटने लगी है। डर लगता है तरह सोने में जी। दिल तो बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। एक और गीत भूपेंद्र और साथियों की आवाज़ में, घरौंदा फिल्म से, गीत गुलजार का, संगीतकार जयदेव का।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में,

हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर, कवि, गीतकार, लेखक और निर्माता निर्देशक गुलजार, जिनके आज हम आपको गीत सुनवा रहे थे आज के फनकार के तहत उनके जन्मदिवस पर। और अब अपने साथी कुंदन कटारिया को इसी गीत के साथ ही इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

आज के फनकार, अभी आप फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के 11 बज चुके हैं। आइए अब सुने फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम अनुरोध गीत। आज का ये प्रोग्राम आपके व्हाट्सएप, आपकी फेसबुक उस पर की गई फरमाइश पर आधारित है। तो जो भी फेसबुक पर आपने हम तक फरमाइश भेजी है, उन फरमाइश को आज के इस प्रोग्राम में पूरा किया जाएगा। सुने अनुरोध गीत।

सभी सुनने वालों को आज नमस्कार। संजय बैद की ओर से दोस्तों आपका फरमाइश का ये प्रोग्राम लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। जिन भी साथियों ने आज हम तक फेसबुक के माध्यम से अपनी फरमाइश प्रेषित की है, उन्हें आज के इस प्रोग्राम में शामिल करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है याराना। इस गीत को गाया किशोर कुमार ने। अनजान के लिखे गीत की धुन तैयार की है राजेश रोशन ने। और गीत को सुनने के लिए फरमाइश आप सब साथियों की है। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन, बेबी जानविका। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। ये फरमाइश हम तक पहुंची है। नाईवाला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा की। बहलोर नगर से हरीशहरी जगतार, सुशील डेलू, राकेश चाहर। रघुनाथपुरा से सतीश शर्मा, रोशनी, भावना, गरिमा, हिमांशी शर्मा। गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से हमारे साथी हैं विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी, शगुन बारासा। गांव लादूवाला तहसील श्री गंगानगर से शोपत चौहान। गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक, देवांश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हम तक भेजने वाले हमारे साथी हैं बहलोर नगर जिला हनुमानगढ़ से प्रेम सिंह वडवाल, सुखवीर, काजल, लखवीर, रानू, कृष्णा, परवीन, शीतल, नवीन, निशान, अनमोल और चटकू और मटकू। ये फरमाइश भेजने वाले हमारे साथी हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। सुल्तान सिंह तरट, कृष्ण, मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, हिमानी जाखड़ हनुमानगढ़ से अपनी फरमाइश हम तक भेजते हैं। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डोली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा आप सब साथियों की फरमाइश पर। फिल्म का नाम बेताब, आवाज़ लता मंगेशकर के साथ शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन तैयार की है आरडी बर्मन ने, पसंद आप सब साथियों की है। नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमेत कौर मनु, ये फरमाइश हम तक पहुंची है। गांव नलोई, तहसील सिवानी, मंडी, जिला हिसार से

सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक, वेदांश की। गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष परमार, दीपल परमार। गांव मंडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश, रजत, बेबी, गरिमा बगड़िया। आप हैं गंज डुंडवारा यूपी से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। जिला बिटोड़ा भोयर, तहसील मंगरूलपीर, जिला वसीम पश्चिम विदर्भ से योगीराज मस्के, श्रीहरि मस्के, इंदुमती, मल्हार, कविता, मोहन, विशाल, कुशल, गोपाल, श्याम गोविंद मस्के और इनके बहुत सारे साथी। श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जोनी बंसीवाल, धनराज बंसीवाल। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान और पूजा परिहार। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, भोडागाछी पश्चिम बंगाल से। सिरसला जिला चूरू राजस्थान से हमारे साथी हैं संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल, कार्तिक और उनके परिवार के लोग। ये फरमाइश हम तक पहुंच गई है। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, सैना हसन, अक्सादीप, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम की। विष्णु मिस्कीन, रितका मिस्कीन, वाणी मिस्कीन, आरव, दयानंद कॉलेज भवानीपेट, सोलापुर, महाराष्ट्र से अपनी फरमाइश हम तक भेजते हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से हमारे साथी हैं निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। आप सब सुने बेताब फिल्म का ये नगमा।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत आप सब साथियों के लिए जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, मसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशां, शबिस्ता मोहम्मद, पलक लुबना और यश मंसूरी, गांव बड़ोपल जिला हनुमानगढ़ से सुभाष छिंपा, इंद्रजीत छिंपा, गांव ढानी लाल खां नौर से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां, ये फरमाइश हम तक पहुंची है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता की, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, जिला मुरादाबाद दुल्लापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, बेबी स्वीटी छाबड़ा, आसाम से हितेंद्र दास हमें तक अपनी फरमाइश भेजते हैं। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप, मंजनूगा टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, गांव बनवाला हनुमंता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और इनके

परिवार के लोग, साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय के साथ हैप्पी राय अपनी फरमाइश हम तक भेजते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी, नंदिनी, ये फरमाइश हम तक पहुंची है मलोट से कुलवंत गिल, जसवंत गिल की। ठाकुर तेजदान चारण, इंदिरा कॉलोनी, महामंदी, जोधपुर, राजस्थान से हम तक अपनी फरमाइश प्रेषित करते हैं। गांव जाखोत से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी, पूजा खटक। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। गांव साबुआना फाजिलका से हमारे साथी हैं करण कंबोज, चरण कंबोज, रियांश और परीश कंबोज। गांव फ्रांसिस से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। आप सब सुने बरसात फिल्म का ये गीत।

सुने अनवर को फिल्म का नाम है जनता हवलदार। मजरू के लिखे गीत की धुन तैयार की है राजेश रोशन ने, फरमाइश आप सब साथियों की है। नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तिप्ता कुमारी, प्रियंका, सुशांत, प्रेम थांदी, बेबी वामिका, वाणी थांदी। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा। लखवली हैट से मास्टर भवनलाल, कृष्णा, सौरव, विशाल, नव्या, लक्षिता, राजबाला, ममता।

चेन्नई से फरमाइश पहुंची है सुरेश मेघवाल, मंजू, निशा, कृष्णा की। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध, सलोनी, संजू, लल्ला चौरसिया, बाबू, शिवा, शिवानी, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, सोनम सिंह और अनामिका सिंह। विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सन्नी भावसार। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमारे साथी हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, डब्बू, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिदान खुराना। बुरनपुरा से प्रदीप कुमार, सिद्ध, रणवीर। अगली फरमाइश हम तक पहुंची हैं कवायत जिला बारां से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव की। जुमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल। बिरडी एमपी से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची, तनु। गांव 10 बीडी खाजुवाला बीकानेर से राम प्रताप लेखा। कंवर कॉलोनी बड़वा खरगोन एमपी से परवीन श्रीमाली, मीना श्रीमाली। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन एमपी से विनोद मूनत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूनत, चेतन आयटा, दीक्षा और कुश मूनत। आप सब सुने जनता हवलदार फिल्म में अनवर को।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, फिल्म का नाम अनुराग, आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीतकार हैं SD बर्मन। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आप सब साथियों की है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिम, साहूकरण राहुल, चंपा साहू, गांव भागसर साधु शहर से मंगतराम धीगड़ा, सुमन संजना, सचिन कुमार, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आलिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जासमीन शीला, रायसी नगर से सोहनलाल जांगीर, सुनील जांगीर, शिव प्रकाश, चेतन राम सरस्वा, धनराज, नरसिंह कुमार, पवन कुमार शर्मा, ये फरमाइश हम तक पहुंची है। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी शिवन्या और अनु गोस्वामी की, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल नाचानी, तिलक तंबोली, बाबू भाई, तहसील भांडेर जिला दतिया MP से राहुल पाल, ज्योति, अंजना पाल, हरिमोहन और बेबी लक्ष्य, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्र जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू के साथ शिखा शेफाली, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन के साथ कविता गौड़, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुचा सिंह पाठक, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले, पुरखोलूस, दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद

शाहनवाज बेबी चाहत और सादिया, चक 15 PS जिला श्री गंगानगर से सरवजीत सिंह जोशन, सरवजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, रोबिन सिंह, पीलबंगा से नवतन बनावत, अमरपाल सिंह, छिंदा सिंह, कालूराम यादव, गगन हरी, गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश जोहरी। आइए सुने अनुराग फिल्म का ये नगमा।

डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख, ये फरमाइश हम तक पहुंची है। चोखड़ा धाम कॉलोनी सनावद जिला खरगोन एमपी से कृष्ण पाल सिंह चौहान, तारा देवी, नवउदित, वैभव पाल सिंह चौहान ध्रुवी और प्रद्युमन चौहान, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज के साथ पीयूष कुमार, छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल

गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मया गजभिये, कस्बा उघेटी बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, देवेंद्र गुप्ता और इनके परिवार के लोग पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चूक, अश्विनी चूक, गोविंद चूक, टोनी दीवान, भाविक ढींगरा, अतुल शर्मा, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी,

दीवान भाविक ढिंगरा, अतुल शर्मा। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी के साथ रानी मानिकपुरी। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन आशमी, नजमा बेगम, तोफीस तैमूर के साथ कलीम अंसारी। कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़। जिला उज्जैन एमपी से भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भोला वाक्तरिया, परवीन, रियांश और प्रतीक वाक्तरिया। बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़, रानी गौड़। तिरुपुर तमिलनाडु से गिरधर सिंह, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम, भुवन प्रकाश, दबीरुल हसन, नजमा बेगम, सरिता गौतम बेगम, शबनम अनवार। मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज। गांव कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, भजनलाल सुथार, कैलाश लक्षिता। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अवंतिका येले। पलेरा हाल टिकमगढ़ एमपी से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। आप सब सुने सितारा फिल्म में लता मंगेशकर के साथ भूपेंद्र को। गुलजार के लिखे गीत की धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म आराधना से आवाज किशोर के साथ लता की, शब्द आनंद बख्शी के, संगीत एसटी बर्मन का, फरमाइश आप सब साथियों की है। गांव टुंकिया बल्होत्रा से कृष्ण कुमार ढाबी, भूपत कुमार, राधा तंवर, विक्रम, अर्चना, साक्षी ढाबी, गांधी चौक बाड़मेर से बुबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष, हीरावाली फाजिलका से सुभाष कोदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु, श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रंजीत राम, सुरेंद्र भादु, सागर एमपी से चंदेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर, ये फरमाइश हम तक पहुंची है। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदा वली, जिला मुरादाबाद से रिग्नी, छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम और अक्षय सेन, हनुमानगढ़ जंक्शन से डीएस जसल, सतवीर जसल, सुरेंद्र कौर, एकम सिंह, सुषमा और इनके बहुत से साथी, आदर्श नगर मलोर से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा, गांव शिरटे जिला सांगली से हनुमत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबी, राही मेहरा झां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, गांव फूलो मिठी जिला भटिंडा से राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, कुलजिंदर सिंह, मनप्रीत कौर, जसप्रीत जस्सी, गांव पीपल रोड सारगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश वर्मा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, सूरतगढ़ से पवन कुमार, सुरजीत सिंह, लेखराज, रवि कुमार, केसर सिंहपुर से राजकुमार ठटे, कमल ठटे, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, तारातन दायमा, भालूराम जी, इस्लामनगर आर्या बाजार से रतनदीप आर्य, स्मिता वाष्णेय,

कार्यक्रम का आखिर गीत फिल्म दो कलियां से, जिसे मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी। रवि के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे साहिर लुधियानवी ने, और पसंद आप सब साथियों की है। गांव हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शहरों नूर हंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव। गांव अली मोहम्मद जिला सिरसा हरियाणा से सुभाष लूना, ओमवती, बुलबुल, अंजू लूना, पिंकी मेनपाल, अमनजीत, दिव्या और रानी, नीतू लूना। बसंत बसमत रोड

महाराष्ट्र से रंजीत कारेगांवकर, कांचन कारेगांवकर, सृष्टि और समरजीत कारेगांवकर, पंचकुला छत्तीसगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान, डब्बू सम्राट और तुलसी, आकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से राम राम नितोने, शारदा, सानिका, रिया, आप सब सुने अपनी पसंद का ये नगमा। साथ ही फरमाइश पहुंची है राम सिंहपुर से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु की भी, रत्नागिरी महाराष्ट्र से संजय भोजने और अमन भोजने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ये फरमाइश हम तक पहुंची है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी झंगेल की। गांव नवागांव मुढ़ीपार जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सोहनलाल साहू, रुक्मणी साहू, तेजेश्वर, कुशाल साहू, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चनाताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रदने सनाव से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना, पाराधमती छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार, चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गम कुमार साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, कुमारी इंद्रानी, माया साहू, बठिंडा रोड मंडी डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। गांव कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, यूदव कड़वासरा, कृष्ण मायल, किडूराम जोहिया, कुंदन जाकर, लीलाधर स्वामी, हनुमान सहारण, आप सब साथियों को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म दो कलियां से।

अभी आप अपने साथी संजय बैद के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम अनुरोध गीत सुन रहे थे। आज का ये कार्यक्रम आपकी फेसबुक पर प्रेषित फरमाइश पर आधारित था। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज दिन भर के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर कार्यक्रम होगा एक ही शीर्षक से। इस प्रोग्राम में आज हम आपको दुआएं शीर्षक से कुछ फिल्मी नगमे सुनाएंगे। गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। दिन में 12:30 पर कलाकार होंगे जगजीत सिंह। खेत खलिहान कार्यक्रम में दिन में 12:50 पर किसान भाइयों के लिए आज जानकारी का विषय रहेगा सिंचाई की आधुनिक विधियां। ग्रामीण महिलाओं के लिए आज उनका कार्यक्रम होगा घर आंगन। दिन में 1:05 पर आज चर्चा के विषय रहेंगे बच्चों का बढ़ता वजन एक गंभीर समस्या, पोषण और स्वास्थ्य का खजाना श्री अन्न। जानेंगे बरसात के मौसम में घरेलू उपचारों के बारे में और साथ ही होंगी कुछ और काम की बातें। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। आज हम आपको सुनवाएंगे गायक दलेर मेहंदी के गाए फिल्मी नगमे। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। युवा साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी शाम 5 बजे। आज बातचीत की जाएगी युवा अपने अवसरों को पंख दें, बुजुर्गों के सम्मान का संदेश। जानेंगे नशा मुक्ति और स्वास्थ्य के बारे में और साथ ही जानेंगे कि संघर्ष से सफलता कैसे हासिल हो सकती है। इसके अलावा होगा आज का इतिहास। सरायकी आप सुन पाएंगे शाम 6:05 पर। संध्या 7 बजे किसान वाणी हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल होगा शाम 7:30 पर। आज बातचीत की जाएगी घग्गर बहाव क्षेत्र में सावधानियों के बारे में, वर्षा काल में बिजली उपकरणों से कैसे बचें, बच्चों को दे अच्छे संस्कार इसके बारे में भी चर्चा होगी और साथ ही होंगे गीत भजन और बाजार भाव। कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से रात 8 बजे। रात्रि 9:15 से लेकर 10 बजे तक आप सुनेंगे आप ही की टेलीफोन कॉल्स पर आधारित राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम हेलो गोरबंद। आज पेशकश होगी श्रीपाल शर्मा की। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गंगा। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 12:05 हुए हैं। आइए कार्यक्रम सुने एक ही शीर्षक से। इस प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं दुआएं शीर्षक से कुछ फिल्मी गाने। पहला गीत दीदार फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। नौशाद के संगीत निर्देशन में, गीत के बोल लिखे शकील बदायूनी ने।

द्वयन शीर्षक से एक कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दुलारा से, जिसे गाया साधना सरगम ने, निखिल विनय के संगीत निर्देशन में, गीत के बोल लिखे रानी मलिक ने।

दुआएं शीर्षक से कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी का गाया हुआ, जिसे लिखा साहिर ने, संगीत रवि का और फिल्म का नाम नीलकमल।

कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म शिकार से, जिसे गाया आशा भोंसले के साथ उषा मंगेशकर ने, गीत लिखा फारूक कैसर ने, संगीत जी एस कोहली का।

कार्यक्रम एक ही शीर्षक में आज आप दुआएं शीर्षक से फिल्मी नगमे सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम का आखिर गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है सत्यमेव जयते। गीत को गाया कविता कृष्णमूर्ति ने, शब्द रचना फारूक कैसर की और संगीतकार हैं बप्पी लाहिड़ी।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक था दुआएं। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। 12:30 हुए हैं। आइए सुने गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कलाकार हैं जगजीत सिंह। इनके स्वर में आइए सुने गुलजार की लिखी कुछ गजलें।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं गायक जगजीत सिंह। आप सुन रहे हैं गुलजार के जन्म दिवस पर उन्हीं की लिखी गजलें जगजीत के स्वर में।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में जगजीत सिंह को सुन रहे थे। आज आपने गुलजार की लिखी गजलें सुनी। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन के 12:50 हुए हैं। खेत खलिहान कार्यक्रम में आज किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय है सिंचाई की आधुनिक विधियां।

खेत खलियान सुननी है सगले किसान भाइया ने सुनील भाई की ओर शू मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, आज खेत खलियान में बात करा सिंचाई की आधुनिक विधियां के बारे में, जिसू कि आप ज़्यादा जल संरक्षण कर सका, समय की बचत कर सका और फसलों को बेहतर उत्पादन ले सका। किसान भाइयों, आपने की है पानी की तो हरदम जरूरत पड़ी है और अपन जो कि पारंपरिक की विधियाँ अपनावा बांशों की है, जिया नहरों या कुओं से पानी लगावा, खाड़ा विधियों क्यारी विधियों, तो भी की है पानी की बहुत बर्बादी है। जितो फसल ने मिलना चाहिए पानी कम चाहिए, पर आप के ज़्यादा भर दिया क्यारियाँ ने तो पानी एड़ो जावे, वाष्प बन गई उड़ जाए या जमीन में चलो जावे, तो पानी की बा बर्बादी हुए। और आजकल का टाइम की है जबकि मुख्य रूप से सिंचाई की चार आधुनिक विधियाँ बहुत ही कारगर साबित होने लाग रही है, बन आप अपना के कम पानी से ज़्यादा रकम भी जान करके अच्छा उत्पादन ले सका। तो आधुनिक विधि में पहली विधि है ड्रिप सिंचाई, जबकि इतने जानो ही हो ड्रिप सिंचाई ने आप टपक सिंचाई भी बोला, बूंद बूंद सिंचाई भी बोला, आ जल संरक्षण की सबसे बढ़िया प्रभावी तकनीक है। इनकी कार्य प्रणाली की आप बात करा तो इनमें की है एक मुख्य पाइप हुआ और बिंग सागे छोटी छोटी पाइपा जुड़ेड़िया हुए जिन्हें लेटरल्स बोले और खेत में बिछाई जावे। अंग ऊपर ड्रिपर लागेड़ा हुआ है, यानी ड्रिपर्स या एमिटर्स बोले, अंग जरिए की है जो पानी है वो सीधो जड़ां कने बूंटेगी, बूंद बूंद करके गिरतो रेवे। आज की विधि है आपने जिया फलदार वृक्ष जिया आम है, नींबू है, अनार है, हाँ सारू बहुत ही बढ़िया रहे, सब्जियां में भी बढ़िया रहे, गन्ने में बागवानी की फसलां हैं बाँ खातरिया बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने लाग रही है। इशू के आपने जो पानी है वो 60-70% ती इनकी बचत हो जाए और इन बचड़ है पानी से आप और मान लो रकबें भी जान करके और कम पानी से ज़्यादा उत्पादन ले सका, तो देखो कितनी बढ़िया आ बात है। दूसरा इनको फायदा वो है कि जहाँ किसान की सारों मोटी समस्या एक हुआ है खरपतवार, ये जगह अवांछित पौधा हुआ है, ये फसल का जगह पोषण खींचे, नमी बिन्न खींचे और उत्पादन ने कम कर दिया। तो जो टपक सिंचाई इनमें कि सारे खेत में पानी कौन पुगे, सिर्फ खूड के अंदर पानी जावे और जो पाड़ो है वो सूखो रहे, तो भी पाड़े के अंदर की है मान लो कोई प्रकार को कचरो दूसरो है वो पैदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बिना पानी कौन मिले। तो ईश अपने जो खरपतवार पर जो खर्चो लागे किसान भाइयों को मेहनत मजूरी लागे, जो आजकल रासायनिक विधियाँ से भी अपन नियंत्रण करा वो कौन करना पड़े और आपने बहुत मोटो फायदो है। और सागे सागे की है जिया उर्वरक आप देवा तो पानी में घोल के सीधा अपना जड़ा तीन पहुँचा सका, जिसमें आपने अच्छो फायदो है। दूसरी जो की विधि है किसान भाइयों, आप देखा फुहारा विधि है, इन्हें छिड़काव सिंचाई प्रणाली भी कहवे, इनमें पानी निकी है फसल के ऊपर फुहारांग द्वारा बरसात कराई जावे और फसल पर छिड़कियो जावे। इनकी कार्य प्रणाली की आप बात करा तो इनमें की है पंप के द्वारा पानी ने दबाव का सागे कई पाइपा खेत में बिछड़ी हुए बांग द्वारा फसल के ऊपर जकी फुहारा लागेड़ा हुआ है, नोजल लागेड़ी हुआ गोल गोल घूम के छिड़काव करे और बरसात करे। इशू आप जिया बलोई मिट्टी है, उबड़ खाबड़ जिया असमतल खेत है या कणक की फसल है, चीनो है, सरसों है, मूंगफली है, इसी फसलों में बहुत ही उपयोगी हुए। इनके लाभ की बात करा तो जिया उबड़ खाबड़ा अपना जमीन है, जिया मोटा मोटा दौरा अपना देखा आजकल दौरा पर भी फसल लह लाण लाग रही है, तो बिंगो कारण वो ही है फुहारा सिंचाई है। भी अपन जमीन एक सी कौन करनी पड़े वो अपन जो को खर्चो है कंप्यूटर कराने को वो कौन लागे, और समतल जमीन में भी इसमें पानी दे सकें और असमतल में भी दे सकें। और एक फायदा और है कि जहाँ गर्मी को मौसम है या पाले का मौसम है तो भी छूँ ज़्यादा गर्मी छूँ ज़्यादा पाले छूँ फसलों की बचाव हुए, मिट्टी को कटाव भी कम हुए। तीसरी आप जकी बात करा वह है सेंटर पिवट सिंचाई। आज की सिंचाई है आ एक नई किस्म है, इनमें भी किया फुहारा हुआ है पर यह स्वचालित हुआ और बड़ा

0: बड़ा जिया फार्म है, मोटा मोटा जिया खेत वह, मोटा जमींदारों को काम में लेवे। इनकी कार्य प्रणाली की है, एक लंबी स्टील की पाइप लागड़ी हुए, इंगे आप यांग ऊपर टिकड़ी हुए, आ पाइप लान गए केंद्रीय बिंदु गए चारों ओर गोल गोल घूम गए कि है पानी को छिड़काव करती रहे। अरे आप बड़े बड़ा जका फार्म है, व्यवसायिक कृषि फार्म है, आ खातर बहुत ही लाभ कह रही है। इनमें अपने देखिए श्रम है, मेहनत मजदूरी है बा कम लागे, एर मोटा क्षेत्र खातर आ कम समय में सिंचाई कर सकें। चौथी अपनी जो कि विधि है आधुनिक बा है सब सरफेस ड्रिप सिंचाई। आई जो कि ड्रिप सिंचाई बोला है बिंगो एक उन्नत रूप है। इनमें की है जिया ड्रिप सिंचाई के अंदर तो अपा जो कि पाइपा हैं बे जमीन के ऊपर बिछावा और इन जो कि सिस्टम के अंदर की है जो कि पाइपा हैं बे 10-15 आंगल जमीन का मां दाब दिया। आप जो कि लंबी अवधि वाली जिया फसल हैं जिया गन्नो है, मक्को है, कपास है, आ खातर बहुत ही बढ़िया वे। इन चूंकि अपने जो को पानी को वाष्पीकरण है वो मान लो नहंग है बराबर है बिल्कुल ही कोनी हुए क्योंकि पाइपा नीचे दबेड़ी हुए और पानी सिद्ध होकर जड़ा के अंदर जाए तो पानी उड़न की संभावना कोनी हुए और पाइप जमीन के नीचे होने के कारण खेत की जब आप कोई बुआई करा बीजांत करा तो मशीन के संचालन में आपने कोई रुकावट कोनी आवे। सगैंग ऊपर सरकार द्वारा भारी सब्सिडी भी मिले 40-80% तीन सब्सिडी प्रदान करी जावे। तो ये विधियां अपना के आप ज्यादा में ज्यादा फायदा उठा सका। बात इंग है लाभों की ओर करा तो जिया सारों मोटो लाभ है विधियां को भारी जल की बचत क्योंकि इनमें सीधो जो को पानी है पौधा की जड़ा ती पुगे वाष्पीकरण को नहीं हुए और पानी बह गए दूसरे क्षेत्र में को नहीं जाए तो पानी की बहुत ही बचत हुए। पानी की 50-70% तीन बचत करके आप ज़्यादा रकबे तक बिजांत कर सका और सागे जो कि अपने जमीन के अंदर मान लो आजकल की है रात दिन आप नलकूप के द्वारा पानी निकाला तो वह समस्या भी कम हो जाए, जल स्तर घटने की समस्या भी इशू आप निपटान कर सका और सागे सागे की है बेहतर फसल और उपज आप गुणवत्ता प्राप्त कर सका क्योंकि आम विधियां में की है फसल के अंदर हरदम की है नमी बनी रहे और कम पानी के द्वारा आप ज़्यादा उत्पादन ले सका। उत्पादन में मैं बात करा तो आप 20-40% तीन बढ़ोतरी ले सका। सागे सागे की आप दिया उर्वरकों को और पोषक तत्वों को छिड़काव करा तो इनमें भी अपने बचत हुआ क्योंकि ड्रिप सिंचाई प्रणाली के द्वारा आप जे मान लो उर्वरक देवा पोषक तत्व देवा तो बेसिद्धा जका के गुड़ गए पौधा की जड़ा मुड़ जाए और वागो पूरा उपयोग भी फसल ले सके। इंशू 30-40% तीन उर्वरकों की बचत हुआ। सागे सागे किया जो को श्रम है और लागत में कमी आवे क्योंकि कोई दिहाड़ी मजदूरी अपन चाहिए को नहीं मी पर जो को अपनों खर्चो लागे सार समार पर भी अपनों जो को खर्चो है वो कम पड़े और आजकल देखो कि मजदूर मिलन कौन लाग रहा किसाना ने तो आ भी एक बहुत बड़ो फायदो है। सागे सागे किया जो कि खरपतवार है और बीमारियाँ हैं आ पर नियंत्रण हुए क्योंकि अंग द्वारा की है पानी सीधो फसल की जड़ में जावे और जो अवांछित खरपतवार है घास है और है बेकी है कौन पनपा क्योंकि ज़्यादातर जगह जगह सुखी रहे तो सुखी जगह पर कोई अपन ध्यान नहीं है कोई चीज़ को नहीं पैदा हुआ और सागे सागे जबकि मान लो बीमारियां है कीट पतंगा है आंगों प्रकोप भी कम हुआ और उबड़ खाबड़ जमीन पर भी आप आराम से पानी लगा सका कोई आपने कंप्यूटर वगैरह कराने की जरूरत कौन पड़े। तो इन त्रियाँ जो किसान भाई ज़्यादा में ज़्यादा आधुनिक सिंचाई की जी पद्धतियाँ अपनावे तो ज़्यादा फायदो ले सके और आज खातिर इतो ही। अब अपने कार्यक्रम को समय जो को पूरा हो थारे सुनील भाई ने दियो आज्ञा राम राम सा राम राम।
1: सिंचाई की आधुनिक विधियाँ खेत खिलान कार्यक्रम में अभी किसान भाई इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन का 1 बजने वाला है। अब से थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है। ये सम्मेलन सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच प्रदान करता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सहयोग को और मजबूत करने और पर्यावरण कार्य समूह के लिए सकारात्मक परिणामों के लिए सार्थक तरीके से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले आज जयपुर में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हो रही बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न दलों के नेता शामिल हैं। बैठक में गुरुवार से शुरू हो रहे विधानसभा के छठे सत्र को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चलाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि सदन सुचारू रूप से चले और जनहित के मुद्दों पर शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राजस्थान पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में सुरक्षा सखियों और युवा सीएलजी सदस्यों से संवाद करेंगे। इसके बाद वे ओटीएस एचसीएम रीपा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अमृत योजना और जयपुर विकास प्राधिकरण के तहत करीब 1100 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में गौवंश के उपचार के लिए नेत्र चिकित्सा स्पेशलिटी सेंटर बनाया जाएगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने केंद्र के लिए भूमि पूजन कर इसका शिलान्यास किया। इस केंद्र में गौवंश के नेत्र रोग, मोतियाबिंद और दृष्टिहीनता जैसी समस्याओं का विशेषज्ञ स्तर पर उपचार किया जाएगा। इस अवसर पर श्री कुमावत ने कहा कि सरकार गौवंश के संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने ऐसे केंद्र संभाग स्तर पर विकसित करने की बात कही। इस दौरान मोबाइल पशु रोग निदान प्रयोगशाला वाहन का भी लोकार्पण किया गया। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये वाहन गांवों और गौशालाओं तक पहुंचकर पशुओं के रक्त, दूध और अन्य नमूनों की मौके पर जाँच करेगा। सवाईमाधोपुर में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच और स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। जिला अस्पताल सहित सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित शिविरों में गर्भवती महिलाओं की जांच कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया गया। जांच के दौरान एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पूर्व सिजेरियन, जुड़वा गर्भावस्था और अन्य जटिलताओं वाली महिलाओं को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के रूप में चिन्हित किया गया। जरूरत के अनुसार उन्हें उच्च स्वास्थ्य संस्थानों के लिए रेफर किया गया। अजमेर में नशा मुक्त समाज का संदेश देने के लिए आज वॉकेथॉन आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की ओर से आयोजित वॉकेथॉन पुरानी चौपाटी से शुरू होकर नई चौपाटी तक पहुंची। इसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और बड़ी संख्या में आमजन ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कोटा पुलिस में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा आधारित स्मार्ट पुलिसिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये 3 दिन का कार्यक्रम IIIT कोटा में कल से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में कोटा शहर और कोटा रेंज के 75 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान AI, साइबर सुरक्षा और अन्य नई डिजिटल तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हुए हैं।

घर आंगन कार्यक्रम सुनाली सगली बहना ने पूनम भाई का घना घना मोकला मोकला राम राम। तो बहनों घर आंगन कार्यक्रम रो थाने भी घणो इंतजार रेवे और मने भी रेवे कि हूँ थारे सागे कोई विचार साझा करूँ, सागा पा बहना बहना मिल के सुना प्यारे प्यारे गीत, सागे सुना मीठा मीठा भजन। तो बहनों आज आप कई विषयों पर चर्चा कर सियाँ, दिया देखो बच्चा को कि है बढ़तो वजन एक गंभीर समस्या, पोषण और स्वास्थ्य को खजानो श्री अन्न, बरसात के मौसम में घरेलू उपचार और की करांगा आप थोड़ी सी काम की बता। तो बहनों अब आप बात करा बच्चों को बढ़तो वजन एक ये है गंभीर समस्या है। तो देखो बहनों आज के बच्चा में की है वजन बढ़तो वजन एक बहुत ही बड़ी चिंता को विषय है। पहला के समय में देखो बहनों के हों तो कि टाबरिया मैदान मायने खेलता खुला, तो देखो बहनों घर होता एर नोरा पड़िया होता निराई। पहला तो देखो बहनों पहला के जमाने में तो लगभग चार दीवारी भी कोनी होती, तो टाबर आपसरी में खेल वो करता और है सारो परिवार संयुक्त परिवार हों तो चाचा ताया का टाबर सागे मिल के खेलता। टाबर भी ज़्यादा होता चार चार पाँच पाँच होता तो वे सारा मिल के खेलता, तो बीचू के नहीं मैंने सारा दिन भाजे फिरता मंग शरीर को अच्छो व्यायाम हो जन। तो पर आजकल देखो बहनों पढ़ाई को तो की ज़्यादा जोर हो गयो। पहला देखो बेना पढ़ते तो हाँ टाबर भी सो कोनी भी जमानों भी चल पढ़ता कोनी है थोड़ी बहुत पढ़ाई होती, पर आजकल देखो बेनो जिया जिया भी युग हो गयो भी हिसाब हो छोटा बच्चा ने मंग पढ़ाई को भी तो ज़्यादा प्रेशर पड़न लग गयो भी मैंने आ सीखो आ चीज़ सीखो आ चीज़ पढ़ो। तो यार मोबाइल को टीवी और वीडियो गेम ये तो बहनों सब ज़्यादा हो गया, इतना तो देखो टाबर पढ़ा है कोनी जितो मोबाइल और टीवी वीडियो गेम में ज़्यादा। ये देखो बहनों की एक रहा बैठे बैठे ही चलाना है जो सोफा पर बैठ गया तो और जो कुर्सी पर बैठ गया तो बने पत्तो ही कौन चल रहा है कद दिन उग गए कद दिन छिपे कौन आए हुए कौन ना बैठे रहे भूख तीस बने की को लागे। पहला खेलता तो बीच में पानी भी पीता बने फिर भूख भी जोर की लागती तो फिर रोटी भी जीमता एर कोई चीज़ खानी पीनी। अब देखो बहनों और तो कोई चीज़ जिम्मे कौन टाबर टाइम सर ना जिम्मे आधी तो वंग बिया गर्मी भरीजे एर बन भूख ही कम लागे पानी भी कम पिए एर एक दूसरो रियो खियो। देखो बहनों वो जो को जंक फूड है इंगो बहुत ही जरस हो गयो आ तो एक समझे। देखो बहनों ये बढ़ाई सी होगी हर घर में हर टाबर ने कि नहीं कोई और चीज़ को चाहे ध्यान है ना है मोबाइल को टीवी को और वीडियो गेम को हर एक जंक फूड को तोड़ डाडो ही चरस हो गयो। तो जीप के स्वाद ने और भी दूसरा देखी देखी की है देखा देखी में जंक फूड का लोग बहुत ही चावशों खावे। एक तो देखो बेणो ये खावा जो थोड़ा चटपटा हुआ खाण में तो अच्छा लगे और दूसरो देखा देखी वाला बहुत हो गयो बढ़िया खाए तो मैं भी खावा आ चीज़ की रिवाज है आ जन्मदिन पर यहाँ जावे यहाँ रिवाज है आजकल आ प्रोग्राम पर आ रिवाज है तो जियाँ पिज्जो है बर्गर है समोसा कचोरी घणी जियाँ मिठा भी है नमकीन भी है तड़े मुन्ना घना ही है वर्खी देखो बेणो डब्बा बंद मावे अर की आजकल मेणिया मावे बांत बांत का रंग बिरंगा मेणिया वर बामे चीज़ा कर ले यही देखो बेणो टाबरा ने बहुत ही खराब करे। अरे ये कोल्ड ड्रिंक है ये ऐसी चीज़ है जो कि आजकल आगे चरसो तो इतो हो गयो मान बढ़ाई तो ये भगवान छोटा छोटा टाबर ही है नहीं बई कैसी में तो मार तो दोस्त आया मन आ चीज़ चाहिए इं पहला बापड़ा टाबर होता सीरो खीर बनतो कदी कदास बनतो तो वे दहा पर जीमता तम कितनी अच्छी चीज़ा होती कितना पोषक तत्व होता टाबरा ने अच्छो फायदेमंद होती मन इसी चीज़ को ध्यान ही कोनी तो वंग शरीर ने भी सही रहन तो आज कर की है इसी चीज़ा खावा इसी चीज़ा खाण छू देखो बेणो तली बुनी है कदगी बनेड़ी हुए हैं कदी रखेड़ी हुए कोनी हुए कई चीज़ मसाला कदगा हुए तो बाँ शू कि वजन ही बढ़े लीवर खराब हुआ शरीर में खराबी आवे तो इं शू के मोटापो आ जाए बच्चा रो वजन के है केवल शरीर की सुंदरता जुड़ेड़ी बात कोनी बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या ही है। तो देखो बहनों ई विषय पर आप चर्चा और कर सियाँ आज है मंगलवार तो आप सुना प्यारो सो हनुमान जी को भजन।

0: बार तैयार है, और कदी कदास कोई हो गयो, कोई महीने में एक आधी बार, कोई साल में कोई 4-5 बार भी टाबर चलो के वे कोई बात नहीं, जमानो है देखे। पर रोजगी जी आप हर चीज़ पूरी करा, आप बारह जावा कोई काम कराऊँ और रोजगी भी ना चिल्ला के देवा बच्चों, तो भैया चीज़ मंगी है बन के ही आप लिया दिया। तो देखो मैनो अब शरीर खातर बहुत ज़्यादा खराब करे, तो अपन ने खुद नहीं इन चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो अपन जी देखो बहनों घरे हरी सब्जी है, फल है, दाल है, दूध है, सलाद है, अनाज भोजन में जी आप शामिल करा भी ने देवा। इतो है भी टाबर ने थोड़ा सा आजकल देखो बहनों टाबर या कौन ही खावा है, तो अपन इतनी और थोड़ी सी हिम्मत करनी हो सी, कोशिश करनी हो सी टाबरों के वहाँ स्वस्थ जीवन खातर है भी जिया। टाबर कोई हरी सब्जी का कोई परौंठा खावे, उबाल के खावे, खिचड़ी खावे, फल ना आजकल थोड़ा सा नए डिजाइन में काट दियो रे, कोई नया इसी को डब्बे में गाल दियो सोने में टाबर जगह में खुश हो जाए, सोनी ट्रे में गाल दियो, दाल ने कोई बढ़िया तरीकों बना दियो, कोई पाल दियो, दाल का परौंठा बना दियो, जिये टाबर कोई चीज़ खावे है दूध का माँ थोड़ा सा कोई चीज़ और रला दियो, आजकल घना ही आवे कोई तो भी मिला गेर भी इन दे दिया नहीं, तो इतम के टाबर खा लिए राजी हो जाए, सागे बिना शरीर ने पोषक तत्व है जका भी मिले है, अच्छी चीज़ है बिना शरीर ने गुणकारी करे, गुण गुण वाली चीज़ें हैं। तो बारे को देखो बेनो खान पान है, तेल मसाला वाली जी चीज़ें हैं नहीं, ये कम मुकम अपन के टावरा ने देनी चाहिए। और इंगा सागा सागा बच्चा ने रोजाना कम से कम कि इसमें 1-2 घंटों खेल कूद है, दौड़ साइकिल चलानी, योग व्यायाम मायने की अपन लगाना चाहिए, बंग सागे खुद करना चाहिए। टाबरिया देखिए देखो बेना आप ही करने लग जाए, आप ही जो फोन देख वो कर सें, सुबह उठते ही फोन में बड़े रहे हैं, तो टाबर तो बेचारा भी कई देर अपने मुँह का नहीं देखेगा, फिर देखो बेनो बेबी फोन ही देखेगा, फिर भी रोन लाजिए फोन दे दो, फिर अपनों काम वाला टाइम हो जाए, पहले आप देख वो करा फिर वन फोन देर आप काम लग जावा। तो की देखो बेनो कोशिश अपन खुद ने भी करनी पड़ती है, टाबरा ने जिया देखेगा जिया करेगा भी टाबर सीखे। तो माता पिता ने टाबरा सागे टाइम बिताना चाहिए, बंग सागे अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी बन आदतों का विकास होए। अपन बच्चा ने वजन घटाने के नाम पर मन ये को नहीं, तू तो मोटो हो गयो, तेने बारह इं के टाबर है या हंस है, तेन बच्चों आगे शिकायत लगावे या अपन कोई के तो बिन कह दिया कल इतनी रोटी कौन खानी, तो आ चीज़ कौन खानी, आ कम कर दे। तो देखो बेनो टाबर ने भुक्को भी कौन रखना, जो भी रहन सहन को तरीको नहीं, अपन बिंग में थोड़ा सा बदलाव लेना है, खुद ने बदलाव लेना है, फिर भी मैं सुधार कर शानी, तो वो बच्चे को आपी के है स्वास्थ्य जो को ठीक हो जी, वजन के सही हो जी, बच्चों जो को अच्छो भोजन खावे, बढ़िया नींद लेवे, बैठे काला काम ना हो ज़्यादा, थोड़ो भाग दौड़ में आप ही टाबर ने थोड़ा थोड़ा काम उड़ा के बुढ़ा बुढ़ा के उड़ा लियो, कभी कह दियो भी तो तेने करना है और है तो आप इसो करावा नहीं, या खेल कूद करे, दौड़ लगावे, साइकिल चलावे। तो जे बच्चों को आप अभी स्वास्थ्य पर ध्यान देवांगा नहीं, फिर ये भी आपकी आने वाली उम्र में स्वस्थ रहे सी, खैर आपा नहीं अपनी भी काया सुखी रहे सी। देखो बहनों टाबरां की हो जाए तो फिर माँ बाप को की कौन रहे, तो इन नौ तो किया जी आपा आप ध्यान रखा नहीं, खैर टाबरा ने खतरां काया निरोगी रहे, तो अब आपा सुना प्यारो सो गीत।
1: चाला जोधपुर ए जी जोधपुर का कबूतर और भाई उड़ता रे फुर फुर रखे मोटर बोली गुर छोरा बोलिया हुर लागर गिंडकड़ा लागर

काल भाई र कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस ये जी मोर राम जी ये जी मोर राम जी कर फैसलो नानी तो कंजूसर भाई नानी बोली अर छोड़ दाल चर पर नानी बोली अर छोड़ दाल चर पर मारा लाल ने

कान्यो गयो भाग नानी का गई लाग, कान्यो गयो भाग नानी का गई लाग। हे जी कान्यो रोवे भाई नानी दौड़े, हे जी नानी दौड़े कान्यो रोवे, हे छेड़े नया जी राग, हे जी

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
6: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया।

0: कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: तो बहनों अभी अपा सुनियो गीत, अब अपा चर्चा करांगा पोषण और स्वास्थ्य को खजानो श्री अन्न। तो बहनों अभी अपा बच्चा का बढ़ते वजन और स्वस्थ शरीर के बारे में बात करी, अब आपा बात करांगा पोषण और स्वास्थ्य को खजानो की है श्री अन्न। तो श्री अन्न को मतलब है बहनों मोटो अनाज, जिंग मायने के है जिया बाजरो है, ज्वार है, रागी है, कंगनी है, कोदो है, कुटकी है, जिसा के है अनाज शामिल है। तो आपने देश में ये अनाज सदियां से खाई जावे, तो आज केवल अपने देश में को नहीं पूरी दुनिया में की है श्री अन्न की खासियत ने समझण लग रही है। आपा केस कांक श्री अन्न जो के है स्वास्थ्य को साचो खजानो है। तो इन मायने की है जी फाइबर है, प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है और घना ही जरूरी पोषक तत्व के है जुका के है हुए। तो बाजरो और ज्वार जिसा अनाज ने की है ताकत देवे और पाचन तंत्र ने सही रखे। आजकल अपन जो खानो पीनो करानी बीमारी ने जका जरूरी पोषक तत्व है जका अपन ने शरीर ने चाहिए, भी जो कोई कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, जकी चीज़ अपन ने चाहिए भी अपन मिलन कौन लाग रही। तो अपन जकी चीज़ अब देखो जी अच्छी लगी बा बना ली खा रही अपन आ चीज़, तो वो तो देखो बहनों आज के जमाना में इस हो रही हुई को नहीं भी अपन आ चीज़ जरूरी है, आ चीज़ अपन खानी है, जियाँ अपन अच्छी लगी, जियाँ कोई रिवाज आ गई, जियाँ कठी देख ली, बस देखा देख ओडा ओड को काम है। तो इन खातर अपन ने भी अपनी आदत बदलनी हो सी। अब कोई आजकल बनावा ही यानी कि नहीं कह दिया टावरा ने आ चीज़ बाजरी मोट बाजरी खिचड़ी बना लिया या दलियो बना लिया, कोई राबड़ी बना लिया, किसी पहलाना लोग खाता अब कौन खावे, अब कोजो लागे, अब अने इतो और हो गयो को जसो इं कौन ध्यान भी पहला के जमाने में खाता तो भी बेचारा बडेरा माईता तो बंगो हट्टी कट्टी तो न्यारी होती, बंगो शरीर है आभाव है, कोई शरीर काया निरोग्य होती वापड़ा बंग कोई रोग को नहीं होता। अब देखो हर चीज़ आप धक्कों अपने हाथी देखो बहनों बके एक रहनी पगा पगा पर कुलाड़ी मारा आप आप ही रोग लेवा। तो इन खातर अपन के आदत आ बदलनी उसी जी आप स्वस्थ रहना है, खास करके आप जे अपने टाबरा ने भी स्वस्थ रखना है। आपने अपनी रोजगी थाली में के श्री अन्न ने जरूर शामिल करना है। तो बाजरे की रोटी बना ली, खिचड़ी बना ली कदी, ज्वार की रोटी है, रागी की रोटी है, रागी शुभनेड़ा जो का व्यंजन है वे भी स्वादिष्ट हुए और पौष्टिक भी हुए। तो श्री अन्न देखो बहनों किसाना खातर भी घणो उपयोगी हुए क्योंकि बाजरो और कई जगह मोटा अनाज हुए नी अन्न कम पानी की जरूरत हो, ये थोड़ा पानी में उग जे फिर भी अन्न देखो फसल पक्के तो पकड़ खातर या ज़्यादा पानी की जरूरत को नहीं हुए। तो इस क्योंकि पानी की भी बचत हुए और खेती ने भी बढ़ाओ मिले और सागे अपने शरीर ने जे अपा ने जिमा नहीं तो अपने शरीर ने जगह जितना भी अपने शरीर ने जगह पोषक तत्व चाहिए भी बे मिल जाए और सागे पचण में आसान है, सागे कोई पेट में कोई गैस बनो कोई अपच होनी कोई प्रकार की कोई दिक्कत को नहीं है। तो आपने की है तो थे मेरी प्यारी बहनों जी आपने स्वस्थ रहना है, टाबरिया ने स्वस्थ रखना है, अपने माइता ने स्वस्थ रखना है, तो आपने परिवार ने आ चीज़ जरूर अपनानी होती है, अपनी रोजगी थाली का माँ चीज एक चीज़ जरूर होनी चाहिए, फिर अपनी काया निरोगी रहे सी, टाबरिया गिरे सी, अपने माइता गिरे सी। तो अपनी जीवन शैली में आप श्री अन्न ने जरूर अपनाना है। तब सुना आप प्यारो सो गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
6: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
7: तो बहनो, अभी आप सुनियो गीत, तो अब आप बात करा बरसात के मौसम में घरेलू उपचार। तो देखो बहनो, सावन को महीना चले, तो सावन और बाद दो महीना तो देखो बरसात को ही महीनों कई जे भी है आवे भी है। और जे बरसात ना आवे तो बिना बहनों, ये बरसात बिना सावन बाद

पण देखो बेणो, मौसम में नमी और गंदा पानी की वजह से की है कई बीमारियां फैलन को डर रही है, क्योंकि ज़्यादा बारिश रही है, धूप लाग गया कोनी, तो इशू के है संक्रमण ज़्यादा पन पे, तो सर्दी जुकाम है एक। देखो बेणो, अंत तो वो के करे नहीं, आंती सर्दी है और जानती सर्दी एक रे कर मानस ने जरूर ही खराब करे। तो इन महीने आपा ध्यान रखा कोनी, दिन में पूरी गर्मी हुए धूप हुए तो आपा बारू आप सीने गोड़ा ठंडो पानी पी लिया, शाम ने देखो बिना सर्दी हुए तो आपा शाम ने ही बिसर जाए कहीं तो या उड़ा कोनी रितो कोनी ध्यान रखा नहीं भी ठंड लाग जी सी, तो अंती सर्दी और जानती सर्दी जरूर ही मरे। तो इन महीने के है सर्दी जुकाम हो जाए, खांसी है, बुखार है, पेट दर्द है, उल्टी दस्त है, अपच, ये सब आम सी परेशानी हो जाए। इन खातर आपा ने अपनी सेहत रो खास ध्यान रखना चाहिए। तो बरसात में सबसे जरूरी है साफ पानी पीनो, साफ सुथरो भोजन करनो है। पानी ने की है अपना ना देना की है जरूर उबालना चाहिए, उबाल गए या फिर ना उबाला एकदम साफ होना चाहिए, ये साफ करके पीना चाहिए। तो बाहर को खुल्लो और ज़्यादा मसालेदार खानो खाना चाहिए अपन ने, बचना ही चाहिए जितो उसके, रात को खानो नहीं खानो चाहिए, बासी खानो नहीं खानो चाहिए। अपना भी कह दें बासी कोई चीज़ पड़ी है या पहला की पड़ी है उगाड़ी पड़ी है तो इसे मौसम का बिया तो देखो अपन कदी नहीं खानी चाहिए, शरीर ने देखो बेणो खराब करे। तो जितो कोई स्वस्थ चीज़ मिले, साह मिले, तो अपने शरीर ने के पाचन में आसानी हो जाए, अपन आपने कोई रोग कौन लगे सोखो पच जाए तो अपन सोर हो जाए। और जे अपन आप ही अड़सू पड़सू जिया मिलियो बिया ही खा लियो, सुबह वालों खा लियो, शाम वालों खा लियो, ठंडो तातो, तो देखो बेणो बापड़ो पेट है वो ही बीमा, कोई मशीन तो है कोई भी नहीं, खराब तो वही है कोई चीज़ है। तो अपन ने थोड़ा सा खुद ने ध्यान रखना चाहिए भी अपना बारह को खानो ना खावा, बासी खानो ना खावा। और खानो खाण से पहले अपन के हाथों ने सोना धोना रहना चाहिए, शौचालय जाने के बाद ही साबुन लगा के अच्छी तरह साफ ने किए हाथों ने किए सोना धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। और जे अपन देखो बेणो सर्दी जुकाम को जे अपना ध्यान रखा फिर ही देखो बेणो कदी कदास हो ही जाए, तो जे अपन ने दिक्कत हो जाए तो गले में जे खराश पैनी तो अपन ने की है जी कंठ, अपना कई बार कहते हैं कोई चीज़ मेरू गिटी जाए कोनी, थूक ही कौन गिटी जाए, तो या दर्द करना जे गला, कोई चाह पानी कौन पीजे तो अपन के नू ने सो पानी ले गए बिमा पानी थोड़ा सो नमक गाल गए यार बिने कर मिला लियो सुनो मिल जाए जो थोड़ा थोड़ा नमक या मकन ठाक माइने रख गए नी अरे गरारा कर लिया, छूटा टावरा ना करावा बहनों बने कई बार ध्यान को नहीं अड़सू टूट जाए, अरे आप थोड़ा सा समझदार हुआ नी तो बड़ा होवे बने की है जे पानी नमक का पानी का गरारा कर लिया, ईशू के है संग पंग सारू मिल जाए अरे अपनों के कोई चीज़ खाई जे पी जाए, ई अदरक गिर तुलसी की जे अपन चाह पी लिया बीशू के थोड़ा बहुत गले में के आराम मिले। तो बेणो ई विषय पर अपन चर्चा और कर सियाँ, पहला सुना ही प्यारो सो ईशु मिलतो जुलतो ही एक गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने

0: अकल लगाई रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420 2233।
5: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
1: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420 2233।
6: तो बहनों, पहला आप बात करा बरसात के मौसम में घरेलू उपचार की। तो देखो बहनों, जब खांसी जुकाम हो जाए तो अदरक या तुलसी की चाय के पी लिया, नहीं बीह के गलम के आराम मिले। और खांसी में देखो शहद जेंग में थोड़ी सी में काली मिर्च मिला लिया तो बीस हुई की है आराम आ जाए। तो शहद ने नहीं तो जो 1 किलो शहद ना आप खावा तो बिन थोड़ा सड़को गर्म कर लेनी, बीस हुई की है आराम आ जाए। और शहद खाण गए कम से कम 1 घंटा ऊपर के अपन की नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो अपने गले में रेसी नहीं फिर ही देखो बहनों आराम मिल सी। एक बात अपन याद रखनी है कि 1 साल हूँ कम छोटे बच्चे ने सेहत नहीं देना चाहिए। जब तक बच्चों 1 साल ऊपर ना हो जाए नहीं बिना देखो बहनों सेहत नहीं चटाना चाहिए, वो के टाबर ने खराब करे। और बरसात के कारण जगह जगह पानी वरजे जी, चूँकि मच्छर ही बहुत हो जाए, तो मच्छर छू बचाव भी अपन के बहुत ही जरूरी है। घर के आसे पासे पानी जमा ना होने देवा, मच्छरदानी को जो इस्तेमाल अपन के कर लेना चाहिए जी, चूँकि अपन के मच्छर ना खावे। बाजार में मच्छर ने भगाने वाली गणी बांध बांध की क्रीम है दवाई आवे तो बे के है आप काम में ले सका। यार देखो बहनों जी, अपन ने तेज बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है, लगातार उल्टी दस्त या ज़्यादा हालत खराब हुए नहीं तो अपन ये कोनी भी घरेलू उपचार में लागे रहा हम ठीक है। जो पूनम भाई ये बतायो खांसी होगी तो अपन अदरक वाली चाह पी रखा पी सारो आजी, सेहत चाटे रखा सारो आजी। देखो बहनों, कई बार कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाए नहीं तो अपन डॉक्टर ने दिखागे रिंगी सलाह छू अपन के दवाई लेनी है और इलाज कराना है। इं कोनी आप घरेलू नुस्खा अपनाई रखा करे रखा। देखो बहनों, थोड़ा बहुत है अब जी थाने क्यों गले में खराश हुए तो जी अब ज़्यादा थोड़ी बहुत दिक्कत है। कई बार देखो बहनों अपने इतनी दिक्कत हो जाए भी एन जी रात भी रात है सुबह उठते ही किए अपनों की है कोई चीज़ ही कौन गिटी जे। तो जब आप किया थोड़ा सा नमक है पानी को गरारा कर लें तो अपन सारो आ जाए। कई बार किया गले में ज़्यादा दिक्कत हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, दर्द होने लग जाए। आजकल देखो बहनों घनी बांध बांध की बीमारियां बन जाए तो इं कौन भी थे क्यों पूनम भाई की और आप तो गरारा करे रख आप ही सारो आ जी। तो अपन की है इसी बात कौन करनी, जे जाता अपने दिक्कत लग गए तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के दिखा गए बिंग सलाह छूँ फिर अपन की है दवाई लेनी है और बिंगो के अपन के इलाज कराना है। तब आप सुना एक प्यारो सो गीत।

तो बेणो हूँ थारे सागे बातें तो और भी करनी, पर स्टूडियो की घड़ी जकी की है इजाज़त को नहीं देन लाग रही। तो बेणो अब थे पूनम भाई ने दियो आज्ञा, हूँ चालू। राम राम सा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यामा की थेत हतार।

0: थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास

0: आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
2: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वायरल वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही

0: मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी दो दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइयाह अरुमनैयागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमार की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए प्रोग्राम सुने फिल्म संगीत।

सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस फिल्म संगीत प्रोग्राम में पार्श्व गायक दलेर मेहंदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हीं के गाए कुछ फिल्मी नगमे आज हम आपको सुनवा रहे हैं। आज के दिन यानी 18 अगस्त को 1967 में बिहार में एक पंजाबी परिवार में उनका जन्म हुआ। अपने

पंजाबी गीतों और अपने खास तौर के पहनावे के लिए दलेर मेहंदी को जाना जाता है। अनेक फिल्मों में उन्होंने हिंदी गीत भी गाए हैं। ये गीत जिसे लिखा गुलजार ने, और सुबह के साथ गुलजार साहब का भी जन्मदिन भी है, विशाल भारद्वाज का संगीत और फिल्म का नाम चुपके से।

दिलीप सेन समीर सेन के संगीत निर्देशन में सुनिए जावेद अख्तर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है अर्जुन पंडित। इस गीत में दलेर मेहंदी का साथ दिया है अलका याग्निक ने।

दलेर मेहंदी के साथ आशा भोसले को आपने सुना। आइए अब सुने दलेर मेहंदी को गीत संगीत आनंद राज आनंद का, फिल्म का नाम बुलेट एक धमाका।

आज प्रोग्राम के आखिर में सुनिए दलेर मेहंदी के साथ सुदेश भोंसले और साथियों को। फिल्म का नाम है मृत्युदाता, गीत लिखा है समीर ने और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में भी आप दलेर मेहंदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हीं के गायन नगमे सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दोपहर के 3 बजे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशरियात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों की 12वीं मीटिंग नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए मिसाली नमूना करार दिया है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि अमरीका ईरानी फौज के साथ पसपर्दा बातचीत कर रहा है। और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में आज शाम मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिलमन से होगा। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों का 12वां इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास ने अहम उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल, इतफाक राय को फ़रोग देने और माहौलियात से मुतालिक बाहमी तआवुन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के इजलास की सदारत माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव ने की। यह इजलास भारत की 2026 की ब्रिक्स सदारत के वसी तर मौजू इस्तेहकाम, इख्तरा, तआवुन और पायदारी की तश्कील के तहत मुनक़िद किया गया। मीटिंग से

करते हुए जनाब यादव ने इंसानियत पहले नज़रिए पर अमल करते हुए एक पायदार कुर्र-ए-अर्ज़ बनाने की जानिब अवामी शिरकत और टेक्नोलॉजी पॉलिसी में तालमेल बनाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के दरमियान आलूदगी के अखराज में 37% से ज़्यादा की कमी की है। वज़ीर मौज़ूफ़ ने इस बात को उजागर किया कि भारत की कुल बिजली की सलाहियत का आधे से ज़्यादा हिस्सा अब साफ ज़राए से आता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे सख्त अमरीकी इंतखाबी जाब्तों के लिए मिसाल करार दिया है। जनाब ट्रंप ने भारत के इंतखाबी तरीक़ाकार को इंतखाबी जांच पड़ताल के लिए मिसाली नमूना करार दिया और अमेरिका में वोटर शनाख्त से मुतालिक ज़रूरतों में सख्ती बरतने की वकालत की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने भारत के चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ अपनी हालिया बातचीत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कुमार ने सवाल पूछा था कि अमेरिका में मजाज तस्वीरी शनाख्ती दस्तावेज़ के बगैर इंतखाबात किस तरह मुनक़िद होते हैं। जनाब ट्रंप ने इस तबसरे के ज़रिए अपने उस मुतालबे को दोहराया कि अमरीकी कांग्रेस को सेफगार्ड अमरीकन वोटर एलिजिबिलिटी सेव अमरीका एक्ट को मंजूर करना चाहिए। इस मुजवजा कानून के जरिए वफाकी इंतखाबात में वोटिंग के लिए सख्त ज़रूरतें मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। इसके तहत राय दहिंदगान को वफाकी इंतखाबात के लिए रजिस्टर करते वक्त अमरीकी शहरियत का दस्तावेजी सबूत और हुकूमत की जानिब से जारी करदा तस्वीरी शनाख्ती कार्ड फराहम करना होगा। व्हाइट हाउस ने इस कानून को अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ अमरीकी शहरियों की जानिब से राय दहिंदगी को यकीनी बनाने वाला कदम करार दिया। अमरीकी इंतजामिया ने कहा है कि भारत और ब्राज़ील ने वोटर शनाख्ती कार्ड को बायोमेट्रिक डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया है, जबकि अमरीका शहरियत के लिए बड़े पैमाने पर ख़ुद से तस्दीक पर इन्हिसार करता है। जनाब ट्रंप ने भारत के आम इंतखाबात के वसी दायरे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के हालिया आम इंतखाबात में तकरीबन 462 मिलियन अफराद ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को कल काठमांडू के शीतल निवास में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान नेपाल के सदर रामचंद्र पावडेल ने नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। इस मौके पर नेपाल के नायब सदर राम साय प्रसाद यादव, वजीर खारजा शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के सफीर नवीन श्रीवास्तव और नेपाली फौज और हुकूमत के आला अहदेदार मौजूद थे। जनरल सेठ नेपाल के अपने हमनसब जनरल अशोक राज सिगडेल के दावत पर इतवार को सरकारी दौरे पर नेपाल पहुंचे। एजाजी जनरल का अहदा देने की ये रिवायत 1950 से जारी है, जिसके तहत नेपाल और भारत एक दूसरे की फौज के सरबराहान को एजाजी जनरल का अहदा अता करते हैं। जनरल सेठ ने नेपाली फौज के सदर दफ्तर में जनरल सिगडेल से भी मुलाकात की। दोनों फौजी सरबराहों ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देरगांव दीमापुर पाइपलाइन शुरू करने के साथ नागालैंड अब नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड और नेशनल गैस ग्रिड के साथ जुड़ गया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब पुरी ने कहा कि इस पाइपलाइन की शुरुआत शुमाल मशरक के इलाके को भारत की तरक्की का इंजन बनाने में एक अहम कदम है और इसके ज़रिए खित्ता हकीकी तौर पर गैस पर मबनी मईशत के साथ मरबूत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुशतबा अफराद की नकल हरकत की इतला मिलने पर उधमपुर, रियासी और कठुआ ज़िले में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने रियासी में साजिनी के जंगलाती इलाके और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बैन अल-अक़वामी सरहद के नज़दीक कई गांवों में भी तलाशी की कार्रवाई की। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के इलाके में बढ़ती हुई बदमनी के तनाजुर में यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने खित्ते में पाकिस्तानी फोर्सेज के हाथों इंसानी हकूक की पामालियों की जानिब बैन अल-अक़वामी बरदारी की तवज्जो मबजूल कराई है। मज़कूरा तंजीम ने आम शहरियों की अमवात और उनके ज़ख्मी होने, मनमानी गिरफ्तारियों, लोगों को जबरन लापता किए जाने और मवासलाती बंदिशों की इतलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मज़कूरा तंजीम ने पुरम सियासी कारकुनों और इंसानी हकूक के अलमबरदार अफराद के खिलाफ ताज़ीरी इकदाम करने और नकलो हरकत पर बंदिशें आयद किए जाने पर भी तशवीश जाहिर की है।

0: पांचवीं सेमिकॉन इंडिया 2026 कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में अगले महीने की 17 तारीख से होगी। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़्यादा मुल्कों के 500 से ज़्यादा नुमाइशकार और तकरीबन 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी सरकर्दा मुल्कों के आलमी CEOs के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है कि वाशिंगटन ने ईरानी फौज के साथ बातचीत के लिए पसपरदार रबते का एक चैनल कायम कर रखा है। IRGC के तर्जुमान हुसैन मोहिब्बी ने मजकूरा दावे को एक वहम करार देते हुए कहा कि IRGC के अहदेदारों और अमरीका के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही है। जनाब मोहिब्बी ने मजीद कहा कि ईरान का सिफारती निज़ाम भी इस वक्त वाशिंगटन के साथ मुजाकरात में मसरूफ नहीं है। जाम्बिया के सदर हकाइंदे हिचिलेमा का दूसरी मरतबा 5 साल मुद्दत के लिए इंतखाब किया गया है। जाम्बिया के इंतखाबी कमीशन ने नतीजों का ऐलान किया है। सदर हिचिलेमा को 51% वोट मिले जो सदारती उम्मीदवार की जीत के लिए ज़रूरी हैं। सरकार ने 2025 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। मुमताज़ कारकर्दगी के लिए ट्रेसा जोली और पुलेला गायत्री गोपीचंद की खवातीन की सरकर्दा भारतीय बैडमिंटन जोड़ी के साथ साथ 15 दीगर खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड पेश किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच प्रवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहानंद कुमार चौहान को द्रोणाचार्य अवार्ड पेश किया जाएगा। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के पहले दौर में भारत के खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिलमन से होगा। ये मैच आज शाम खेला जाएगा। उधर उन्नति हुडा खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। उन्होंने म्यांमार की खिलाड़ी को शिकस्त दी। मिक्स डबल्स के पहले राउंड में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गाडे को कनाडा की जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई की जोड़ी ने हरा दिया। भारत की जोड़ी पहला गेम 22-20 से जीतने के बाद अगले दोनों गेम 19-21 और 17-21 से हार गई। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों की 12वीं मीटिंग नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए मिसाली नमूना करार दिया है। ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि अमरीका ईरानी फौज के साथ पसपरदा बातचीत कर रहा है। और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में आज शाम मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलमन से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद।

और साथियों को आपने सुना गैंगस्टर फिल्म में। प्रोग्राम की अगली पेशकश हर्षित सक्सेना को सुनिए, फिल्म है मर्डर टू।

जन्नत फिल्म का नगमा अभी आपने सुना केके का गाया हुआ। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी है। पेश खिदमत है अदबी मैगजीन अदब नुमा।

कुछ दिल की धड़कनों में इजाफा सा हो गया जब भी नजर मिलाई तुम्हारी नजर के साथ। बेशक हमारी नजर आपकी नजर से ना भी मिल रही हो, लेकिन दिल से दिल की आवाज तो जरूर सुनाई देती है, और यही वजह है कि हम चले आए हैं आपसे मुलाकात करने। दोस्तों, कहते हैं कि किताबें इंसान की अच्छी दोस्त होती हैं, और हम भी इस बात से 100% इत्तेफाक रखते हैं, मगर तंगी वक्त के बायस ये जौक शौक पीछे छूटता जा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए उर्दू अदब की चंद असनाफ लेकर आए और आपको सुनवाएं, ताकि कम वक्त में आप इन असनाफ से महसूस हो सकें। उर्दू अदब से ज़ौक शौक रखने वालों की बात की जाए तो किसी को गजलों से, किसी को नज़मों से, तो किसी को किस्से कहानियों से और अफसानों से दिलचस्पी होती है, शेर व शायरी का शगफ होता है। तो जनाब मन, हमने इसी बात को मलहूज़ खातिर रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं अदब नुमा, और आप तो जानते ही हैं इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं कलाम शायर और एक अफसाना। तो आइए ताखीर ना करते हुए आपको पहले सुनवाते हैं कलाम शायर के तहत मारूफ शायर जावेद मुशीरी का कलाम।

और शेर समात फरमाए, तो किस उम्मीद पर कहते कि हम तुम्हारे हैं, तो किस

और गजल का आखिरी शेर, बिछड़ते वक्त ये पलकों पे जुगनुओं का हुजूम,

0: दूसरी गजल का मतला समाप्त फरमाएं।
1: साहिल की तलब और है दरिया की तलब और, साहिल की तलब और है दरिया की तलब और, प्यासे की तलब और है सहरा की तलब और, प्यासे की तलब और है सहरा की तलब और।
0: और ये शेर भी समाप्त फरमाएं।

बेकार तमन्नाओं के पर बांध रहे हो, अच्छे की तलब और है उनका की तलब और, अच्छे की तलब और है उनका की तलब और, साहिल की तलब और है सहरा की तलब और, यूं ख्वाहिश बेजा में गिरफ्तार तो सब हैं।

वाह क्या बात है, क्या खूब अंदाज और क्या खूब तरन्नुम, खूबसूरत आवाज में। उम्मीद करते हैं जावेद मुशीरी साहब का ये कलाम आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब आपको लिए चलते हैं इस प्रोग्राम में उर्दू की एक और सिंफ की जानिब, और वो सिंफ है अफसाना निगारी। अफसाने में जिंदगी के किसी पहलू, किसी खास वाक़े का जिक्र और जिंदगी

कई वजहें थीं। पहली वजह तो ये थी कि भेड़ें बच्चे बहुत पैदा करती थीं और जंगल में जगह जगह उनके रेवड़ों के फैले रहने से दूसरे जानवरों को कूदने फांदने और भागने दौड़ने में रुकावट पैदा होती थी। भेड़ों का रहन सहन और खाने पीने का तरीका दूसरे जानवरों से अलग था। नफरत की एक वजह यह भी थी। एक और वजह यह थी कि जंगल का राजा शेर भेड़ों पर मेहरबान था। यह और बात थी कि शेर की मेहरबानियां सिर्फ उन चंद भेड़ों तक ही महदूद थीं जिनके बाल ज्यादा घने और सफेद थे। भेड़ों की बहुत बड़ी तादाद तो ऐसी थी जिनके बदन पर बाल थे ही नहीं, और जिन पर थे भी तो वो काफ़ी छिद्रे और नुचे खुचे थे, और उनके पेटों में गड्ढे भी थे। गड्ढे इसलिए थे कि उन्हें पेट भर चारा नहीं मिलता था, और चारा न मिलने से उनके पेट अंदर तक धंस गए थे और धंसे हुए खाली पेट गड्ढों की तरह दिखाई देते थे। उन्हें चारा इसलिए नहीं मिलता था कि जंगल की बहुत सी चरागाहों में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। भेड़ों से नफरत करने वाले जानवर शेर से भी जलते थे। शेर से जलने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि शेर भेड़ों पर मेहरबान था, बल्कि असल वजह ये थी कि शेर जंगल का ख्याल कम और अपना ज़्यादा करता था। उसकी मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो जंगल की हर एक चीज़ पर सिर्फ अपना हक समझता था। अगर वो किसी जानवर को अपना शिकार बनाता तो उसे अपना पैदाइशी हक समझता। वो जब चाहता दहाड़ता और अपनी दहाड़ से जंगल के कोने कोने में दहशत फैला देता, मगर किसी दूसरे जानवर की गुर्राहट भी उसे पसंद नहीं थी। जब भी कोई जानवर ज़रा भी ऊंची आवाज़ में बोलता तो उसकी मूंछें तन जाती, गुस्से से उसका मुंह फैल जाता और उसके नुकीले दांत बाहर निकल आते। शेर से दुश्मनी रखने वाले जानवर हमेशा शेर से बदला लेने और उसको नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे, मगर कामयाबी न मिलने पर वो अपना गुस्सा भेड़ों पर उतारते थे। कभी भेड़ों के बच्चे पकड़ ले जाते, कभी बूढ़ी भेड़ों को मार गिराते, कभी मादा भेड़ों के थनों को भंभोर डालते, और कभी कभी रेवड़ों पर हल्ला बोलकर उन्हें इतना दौड़ाते कि बहुत सी भेड़ें आपस में टकरा टकरा कर कुचल जाती। शेर से उनकी दुश्मनी बढ़ती गई और यहाँ तक जा पहुँची कि उन्होंने एक दिन शेर के खिलाफ बहुत सारे जानवरों को जमा कर लिया। उनमें से एक ने अपनी गर्दन उठाकर भीड़ को मुखातिब किया और नहायत ही असरदार और गुस्से से भरी आवाज़ में कहा, साथियों, शेर की मनमानी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, हमें इसके खिलाफ मिलजुल कर कुछ करना चाहिए। यूं भी इस जंगल पर उसको राज करते हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, अब किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। फिर ये हुआ कि आपस में राय मशवरा करके उनमें से कुछ जानवर शेर के पास गए और बहुत ही गंभीर लहजे में बोले, माफ़ कीजिएगा, हमें आप पर भरोसा नहीं रहा, अब हम अपना राजा किसी और को बनाना चाहते हैं। शेर ने बहुत ही जब्त और धीरज के साथ उनकी बात सुनी और एक एक को घूरते हुए पूछा, क्या ये जंगल के सभी जानवरों की राय है? शेर के इस सवाल पर उनमें से कुछ तो सहम कर खामोश हो गए, मगर कुछ जानवरों ने जोर देकर जवाब दिया, हाँ, जंगल के सभी जानवर चाहते हैं कि उनका राजा किसी दूसरे को बनाया जाए। उनका जवाब सुनकर शेर बड़ी नरमी से इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मगर मेरी जानकारी के मुताबिक सभी जानवर ऐसा नहीं चाहते, फिर भी मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूँगा। मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि आप अपना राजा फिर से चुन लीजिए, शर्त सिर्फ यह है कि मैदान में मैं भी उतरूंगा। जानवरों ने शेर की शर्त बखुशी मान ली। अब तय ये करना था कि शेर के मुकाबिल मैदान में उतारा किसे जाए। पूछताछ करने और टोह लेने पर पता चला कि यूं तो जंगल का हर एक जानवर राजा बनना चाहता था, मगर बाघ, भेड़िया, तेंदुआ और भालू अपने को इस ओहदे का हकदार समझते थे। एक साथ ये चारों तो राजा बन नहीं सकते थे, इसलिए फैसला

मुकाबला ये हुआ कि चारों ही मैदान में उतरे, जो जीत जाएगा उसे जंगल का राजा बना दिया जाएगा। इस फैसले के साथ ही बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, भालू चारों जंगल में घूम घूम कर तमाम छोटे बड़े जानवरों से मिलने लगे। ये चारों उम्मीदवार बारी बारी से भेड़ों के पास भी पहुँचे और अपने अपने दांतों को छुपाते हुए बहुत ही मीठी आवाज में बोले, हम अगर राजा हो गए तो तुम्हारे लिए जंगल की सारी चरागाहें खोल देंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, हमारे राज में कोई तुम पर हमला नहीं करेगा, तुम्हारा एक बच्चा भी नहीं मारा जाएगा। उनकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर भेड़ों के रेवड़ से कुछ भेड़ें गर्दन उचका उचका कर उनकी तरफ देखने लगी। उधर शेर ने भी जंगल के जानवरों को अपने पास बुलाकर उनसे मिलना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने ज्यादा घने और सफेद बालों वाली भेड़ों को भी अपने कछार में बुलाया और न जाने उनके कानों में क्या कहा कि जब वो कछार से बाहर निकली तो उनकी आंखें हिरनों की तरह चमक रही थी। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक बड़ी सी वादी में जमा हुए। राजा बनने की शदीद ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवार शेर, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया और भालू पांचों जानवरों के हुजूम से हटकर पांच किनारों पर जा खड़े हुए। जंगल के ढिंडोरची ने चीख चीख कर भीड़ को मुखातिब किया, सुनो सुनो ऐ जंगल के समझदार और होशियार बासियों, सुनो, तुम्हारे होने वाले राजा तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन्हें देखो, सोचो और अपनी अपनी पसंद के राजा के खेमे की तरफ बढ़ जाओ। डिंडोरची का ऐलान सुनते ही जानवर अपने झुंड से निकलकर पांचों उम्मीदवारों के पास पहुंचने लगे। ज्यादा सफेद और घने बालों वाली भेड़ें दूर दूर तक फैले हुए अपने रेवड़ से निकलकर शेर की तरफ बढ़ीं। बस फिर क्या था, उनके पीछे पीछे भेड़ों का सारा रेवड़ भी शेर के पास पहुंच गया। शाम तक जानवरों का सारा हुजूम पांच हिस्सों में बढ़ चुका था। एक एक हिस्से की गिनती शुरू हुई। शेर के पास जमा हुए जानवरों की तादाद सबसे ज्यादा निकली। शेर जीत गया और फिर से जंगल का राजा बन बैठा। बाघ, तेंदुआ, भेड़िया और भालू अपनी हार से बहुत दुखी हुए और काफी शर्मिंदा भी। उन सब ने अपनी हार का जिम्मेदार भेड़ों को ठहराया। बाघ और भेड़िया तुम्हारे गुस्से के भेड़ों के रेवड़ पर जगह जगह टूट पड़े। जख्मी भेड़ें बदहवास होकर गिरती पड़ती, लंगड़ाती, रोती पीटती शेर के पास पहुंची। शेर ने उनका रोना धोना सुनकर दहाड़ते हुए ललकारा, खबरदार, अब अगर किसी ने इन पर हमला किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। मगर शेर की दहाड़ और धमकी के बावजूद हमले नहीं रुके। कुछ दिनों बाद तेंदुआ और भालू दोनों एक साथ मिलकर भेड़ों के पास आए और बहुत ही एतमाद और भरोसे के साथ प्यार भरी आवाज में हमदर्दी जताते हुए बोले, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम वादा करते हैं कि तुम्हारे वास्ते जंगल की दूसरी चरागाहें भी खुलवा देंगे। तेंदुआ और भालू की नर्म मुलायम बातें सुनकर भेड़ें जुगाली करने लगी, जैसे उनके सूखे मेदों से बहुत सारी हरी मुलायम पत्तियां निकलकर उनके मुंह में आ गई हों। उनके सर हिलने लगे, दुमे भी हिलने लगी और उनके पांव भी आगे पीछे होने लगे। गिरगिटों के जरिए शेर तक जब ये खबर पहुंची तो घबरा कर फौरन उसने अपनी सलाहकार लोमड़ी को तलब किया। लोमड़ी ने अपनी आंखें नचा नचा कर खबर की गंभीरता से शेर को आगाह किया। शेर ने बिना देर किए अपने पालतू दरिंदे जंगल के कोने कोने में दौड़ा दिए। देखते ही देखते बाघ और भेड़िए के बहुत सारे हिमायती बंदी बनाकर गुफाओं में कैद कर दिए गए। बाघ और भेड़िए शेर की इस चालबाजी पर इस दर्जा झिल्ला उठे कि वो शेर को उसकी इस हरकत का मजा चखाने के लिए आपस में मिल गए। उन्होंने बहला फुसलाकर गीदड़, सांप और बंदरों को भी अपने साथ मिला लिया। शेर से मुकाबले की तैयारियां शुरू हो गई। सब ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए। गीदड़ों की बाकायदा बैठकें होने लगी, हुआ हुआ निकलने लगा। दूर दराज के गीदड़ भी इस कोरस में शामिल हो गए। गीदड़ों ने अपनी भपकियों से भेड़ों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। सांप अपने बिलों से निकलकर भेड़ों के सामने लहरा लहरा कर अपना फन फैलाने लगे। उनकी फुनकारें भेड़ों के कानों में घुसकर उनके दिलों को दहलाने लगी। बंदर भेड़ों के रेवड़ों के आसपास के पेड़ों पर चढ़कर दांत किचकिचाने लगे। कलाबाजियां खाने के बहाने भेड़ों की पीठ पर धम धम कूदने लगे। बाघ और भालुओं ने अपने हमले तेज कर दिए। भेड़ें

0: दाएं बाएं अंदर बाहर हर तरफ से मार खाने लगी। जगह जगह उनके बच्चे कुचले और डसे जाने लगे। बूढ़ी भेड़े अपनी जानों से हाथ धोने लगी, नौजवान भेड़े लगड़ाने लगी और मादा भेड़े अपने थनों की नोच कसोट के दर्द से कराहने लगी। तंग आकर बहुत सारी भेड़े शेर के कछार में पहुंची। शेर से रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया, खून रिसते हुए जख्म दिखाए और गिड़गिड़ा कर बोली, हमसे और नहीं सहा जाता, हमारी हालत पर तरस खाइए और किसी तरह इन दरिंदों से हमें बचाइए। भेड़ों का हाल देखकर शेर ने गुर्राते हुए अपने शेरों को हुक्म दिया कि वह हमला रोकने का जतन करें, मगर इसके बावजूद बाघ भेड़िए और उनके साथियों के हमले नहीं रुके। भेड़े शेर से नाउम्मीद और मायूस होकर रहमतलब निगाहों से दूसरे जानवरों की तरफ देखने लगीं। ज़्यादा घने और सफ़ेद बालों वाली भेड़ें भी न जाने क्यों इस बार उनके साथ हो गईं। ये देख कर कि भेड़ें उनकी तरफ देखने लगी हैं, बाघ और उसके साथियों ने हमले रोक दिए। अब भेड़ें बेखौफ होकर इत्मीनान की सांस लेने लगीं। उनके जख्म भरने लगे, मगर कुछ दिनों के बाद अचानक एक रोज़ रात के सन्नाटे में उन पर हमला हो गया। इस हमले में बहुत सारी भेड़ें मर गईं और हज़ारों की तादाद में बुरी तरह जख्मी हो गईं। भेड़ों के रेवड़ में कोहराम मच गया। उनकी चीखों पुकार से सारा जंगल दहल उठा। उनके दुख में शरीक होने और उनसे हमदर्दी जताने जंगल के कोने कोने से जानवर पहुंचने लगे। अपना सारा काम छोड़कर जंगल का राजा शेर भी उनके पास पहुंचा। भेड़ों की हालत देखते ही शेर की आंखों से आंसू जारी हो गए। रो रो कर उसने भेड़ों का हाल पूछा, आगे बढ़कर उनके जख्मों पर मरहम रखा, हमदर्दी के बोल बोल कर ढारस बंधाई, हर तरह का दिलासा दिया और अपने कारिंदों से कहकर उनके आगे हरे नर्म चारे के ढेर लगवा दिए। सिर्फ यही नहीं कि शेर ने भेड़ों के गम में आंसू बहाए, उनके लिए मरहम पट्टी और चारा पानी का बंदोबस्त किया, बल्कि उनकी तसल्ली के लिए बहुत से गीदड़, बंदर, सांप और कुछ बाघ, भालू और भेड़िए पकड़कर बंद भी कर दिए। शेर के आंसुओं और उसकी चारा गरी के जज्बे से भेड़ें फिर पसीज गईं।
1: अभी आपने जनाब गजनफर अली का तहरीर करदा अफसाना सुना, उनवान था चारा। उम्मीद करते हैं कि यह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और जाते जाते आपको एक गज़ल न सुनवाई जाए, ये कैसे हो सकता है जनाब? तो लीजिए समाप्त फरमाइए जगजीत सिंह की गाई हुई यह गज़ल। कलाम है नदीम परमार का।

कलामी शायर के तहत कलाम भी हमने आपको सुनवा दिया, अफसाना भी आपने सुना और गजल भी आपकी नजर की। बस अब तो आपसे यही कहेंगे, अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे घर खुदा लाया। अपने मेजबान नईम को दीजिए इजाजत आज के प्रोग्राम से।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदब नुमा मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला

किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में ये नगमा भी आपने हम किसी से कम नहीं फिल्म से सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नजर है लता मंगेशकर को, सुनिए फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा काली चरण फिल्म से हमने आपको सुनवाया। इससे पहले आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के साथ नंदा को, फिल्म थी जब जब फूल खिले। प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म है ड्रीम गर्ल।

मूर्ति की आवाज में ये नगमा था प्रतिज्ञा फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश रुक तेरा मस्ताना फिल्म का नगमा, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: अच्छा तो हम चलते हैं,
1: अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं।
2: किशोर कुमार के साथ थी लता मंगेशकर, फिल्म थी आन मिलो सजना। साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। भारत की सदारत में बीस मुल्कों के माहौलियात के वजीरों की 12वीं मीटिंग नई दिल्ली के भारत मंडप में मुनक़िद की गई। केरलम में विजिंजाम बंदरगाह से बराह रास्त दरामदाद और बरामदाद आज से शुरू हो गई। यह कदम खित्ते में समुद्री तिजारत के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मज़ीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए मिसाली नमूना करार दिया है। हुकूमत ने कौमी खेल अवार्ड्स का ऐलान किया है। बैडमिंटन की खातून खिलाड़ी टेरेसा जोली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में आज शाम मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलमंड से होगा। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों का 12वां इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास ने अहम उमूर पर तफ़सीली तबादला ख्याल किया। इत्तेफाक राय को फ़रोग़ देने, माहौलियात से मुतालिक बाहमी तआवुन को मज़ीद बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। ब्रिक्स उज़राए माहौलियात के इजलास की सदारत माहौलियात जंगलात और आबहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने की। ये इजलास भारत के 2026 के ब्रिक्स सदारत के वसी तर मौजू इस्तेकाम इख्तिरा तआवुन और पायदारी की तश्कील के तहत मुनक़िद किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब यादव ने इंसानियत पहले नज़रिया पर अमल करते हुए एक पायदार कुर्रायज बनाने की जानिब अवामी शिरकत और टेक्नोलॉजी पॉलिसी में तालमेल बनाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के दरमियान आलूदगी के अखराज में 37% से ज़्यादा कमी की है। वज़ीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि भारत की कुल बिजली की सलाहियत का आधे से ज़्यादा हिस्सा अब साफ ज़राए से आता है। केरलम में विजिंजाम सी पोर्ट से रास्त दरामदाद और बरामदाद आज से शुरू हो गई हैं। यह कदम खित्ते की समुद्री तजारत के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। केरलम के वजीर आला वी डी सेतासान ने इन खदशात का खिदमात का इफ्तिताह किया। उन्होंने यूरोप के लिए 2 कंटेनरों को रवाना किया। पिछले साल 2 मई को इस बंदरगाह के कौम के नाम वक्फ किए जाने के बाद बराह रास्त बरामद और दरामद की सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। इन बराह रास्त खिदमात के साथ यूरोप में जाने वाले जहाज़ों के वक्त में खातिरख्वाह कमी आएगी। विजिंजाम से चलने वाले जहाज़ जो पहले 2 महीनों में पहुँचते थे वो अब 28 दिन में यूरोप पहुँच जाएंगे। बंदरगाह के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की कि इस बंदरगाह से फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए फुल कंटेनर लोड्स FCL के लिए ही खिदमात दी जाएंगी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्काम को हिदायत दी कि जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुँचाए ताकि उनकी अगले कुछ दिनों में जामे तिब्बी जाँच हो सके। मकामी मीडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी के बानी इमरान खान के इलाज और अपने घर वालों से मिलने से मुतालिक कई अरदासों की समाअत करते 3 मेंबरों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये हुक्म सादिर किया। अदालत ने कहा कि इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी और तिब्बी सहूलियात के लिए उनके हक की आईनी गारंटी के तहत ये हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के इलाके में बढ़ती बदअमनी के तनाजुर में यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने खित्ते में पाकिस्तानी फोर्सेज के हाथों इंसानी हकूक की पामालियों की जानिब बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तवज्जो मबजूल कराई है। मस्कुरा तंजीम ने आम शहरियों के अमवात और उनके जख्मी होने, मनमानी गिरफ्तारियां, लोगों के जबरन लापता किए जाने और मवासलाती बंदिशों की असलाहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मस्कुरा तंजीम ने पुरअमन सियासी कारकुनों, इंसानी हकूक के अलमबरदार अफराद के खिलाफ तजीजी इकदाम करने और नकलो हरकत पर बंदिशें आयद किए जाने पर भी तशवीश जाहिर की है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत की इत्तला मिलने पर उधमपुर, रियासी और कठुआ ज़िले में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। इसके अलावा

सिक्योरिटी फोर्सेस ने रियासी में सिडनी साडनी के जंगलाती इलाके और कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में बैनल अक्वामी सरहद के नज़दीक कई गांवों में तलाशी की कार्रवाई दी। इधर शुमाल कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कल पूंछ जिले में कंट्रोल लाइन से मुतसिल इलाकों का दौरा किया। उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, कार्रवाई से मुतालिक तैयारियों, दुशवार गुजार इलाके में तैनाती के चैलेंजों से वाकिफ कराया गया। उन्होंने अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों से गुफ्तगू की और दुश्वार गुजार रास्तों और ख़राब मौसम के बावजूद उनकी मुस्तैदी और पुख्ता अज़्म को सराहा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड की तारीफ की है और इसे सख्त अमरीकी इंतखाबी जाब्तों के लिए मिसाल करार दिया है। जनाब ट्रंप ने भारत के इंतखाबी तरीक़ाकार को इंतखाबी जांच पड़ताल के लिए मिसाली नमूना करार दिया और अमरीका में वोटर शनाख्त से मुतालिक ज़रूरतों में सख्ती बरतने की वकालत की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने भारत के चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ अपनी हालिया बातचीत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कुमार ने सवाल पूछा था कि अमेरिका में मजाज तस्वीरी शनाख्ती दस्तावेज़ के बग़ैर इंतखाबात किस तरह मुनक़िद होते हैं। जनाब ट्रंप ने इस तबसरे के ज़रिए अपने उस मुतालबे को दोहराया कि अमेरिकी कांग्रेस को सेफ गार्ड अमरीकन वोटर सेव एलिजिबिलिटी अमरीका एक्ट को मंजूर करना चाहिए। इस मुजवजा कानून के ज़रिए वफाकी इंतखाबात में वोटिंग के लिए सख्त ज़रूरतें मुतारिफ कराए जाने की तजवीज़ है। इसके तहत राय दहिंदगान को वफाकी इंतखाबात के लिए रजिस्टर करते वक्त अमरीकी शहरियत का दस्तावेजी सबूत और हुकूमत की जानिब से जारी करदा तस्वीरी शनाख्ती कार्ड फराहम करना होगा। व्हाइट हाउस ने इस कानून को अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ अमरीकी शहरियों की जानिब से राय दहिंदगी को यकीनी बनाने वाला कदम करार दिया। अमरीकी इंतजामिया ने कहा है कि भारत और ब्राज़ील ने वोटर शनाख्ती कार्ड को बायोमेट्रिक डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया है, जबकि अमरीका शहरियत के लिए बड़े पैमाने पर ख़ुद को तस्दीक पर इनसार करता है। जनाब ट्रंप ने भारत के आम इंतखाबात के वसी दायरे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के हालिया आम इंतखाबात में तकरीबन 462 मिलियन अफराद ने अपने हक राय दे का इस्तेमाल किया। अमेरिका के खसूसी एलची जेट खुशनर ने कहा है कि इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात के दौरान गाजा में जंगबंदी के मुजवजा मंसूबे पर नुमाया पेशरफ्त हुई है। जनाब कुशनर के मुताबिक इस बातचीत में गाजा की तामीर नो और हमास को गैर मुसल्लह करना और इसराइल की सिक्योरिटी से मुतालिक खदशात पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू और उनकी टीम की तश्वीश को इस मुलाकात से दूर किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुजवजा मंसूबे से मुतालिक पाए जाने वाली गलत फहमियों और गलत मालूमात को भी वाजे किया गया। जनाब कुशनर ने यह भी कहा कि अमरीका गाजा के तामीर नो के लिए पुरअज़्म है, लेकिन ये अमल तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि गाजा को गैर मुसल्लह ना कर दिया जाए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन KPSC के मुबैना पेपर लीक घपले के मामले में कई मकाम पर तलाश की कार्रवाई की। KPSC के सबक चेयरमैन शिव शंकर अप्पा एस साहूकार को इम्तहान का पर्चा लीक होने के मामले में मुलजिम बताया गया है। उन पर OMR शीट में हेरा फेरी करने और सरकारी वेटरनरी अफसरों की भर्ती के लिए एक एक उम्मीदवार से 70 से 80 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि एक प्राइवेट कंपनी ने बिचौलियों का काम किया था। इस तनाजुर में ईडी ने शिव शंकर अप्पा और KPSC के कुछ साबिक अरकान की रिहाइश गाहों और प्राइवेट कंपनी से वाबस्ता दफातर में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। सरकार ने 2025 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। मुमताज कारकर्दगी के लिए टेरेसा जोली और पुलेला गायत्री गोपीचंद की खवातीन के सरकर्दा भारतीय बैडमिंटन जोड़ी के साथ साथ 15 दीगर खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड पेश किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटे लाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंद कुमार चौहान को द्रोणाचार्य अवार्ड पेश किया जाएगा। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में WWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के पहले दौर में भारत के खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमेन से हो गए मैच आज शाम खेला जाएगा। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत की सदारत में 20 मुल्कों के माहौलियात के वजीरों की 12वीं मीटिंग नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद की गई। केरलम में विजिंजाम बंदरगाह से रास्त दरामदात और बरामदात आज से शुरू हो गई हैं। यह कदम खित्ते की समुद्री तिजारत के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को आज विकास पारिक का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के युवाणी के अंक में हम आपसे करेंगे कुछ विषयों पर बातचीत और साथ ही सुनवाएंगे आपको कुछ फिल्मी गीत। साथियों, ये कार्यक्रम युवाओं का है तो युवाओं से हम बहुत आशा रखते हैं, उनमें बहुत ऊर्जा भी होती है, उनके बहुत से सपने भी होते हैं। और कहा जाता है कि सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। और यही सपने जब युवा देखते हैं और सफल होते हैं तो यकीनन हमारा देश आगे से आगे बढ़ता जाता है। युवाओं को अपने सपनों को और उन्हें जो अवसर मिले हैं उन्हें पंख देनी चाहिए, यानी उन्हें और आगे बढ़ाना चाहिए। जब सपनों में युवा की ऊर्जा जुड़ जाती है तो असंभव भी संभव बनने लगता है। साथियों, अवसर कभी भी दरवाजे पर दस्तक देकर ये नहीं कहते कि मैं अवसर हूँ और मुझे पहचानो। अवसर अक्सर चुनौती के रूप में आते हैं, कभी असफलता के रूप में तो कभी छोटे छोटे मौक़ों के रूप में। ज़रूरत है तो बस उन्हें पहचानने की, उन पर विश्वास करने की और अपनी पूरी मेहनत के साथ उन्हें सफलता में बदलने की। साथियों, युवा केवल देश का भविष्य नहीं है बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी है। युवा साथियों के पास जो ऊर्जा है, जो विचार है, जो तकनीकी है, जो जुनून है, वो कुछ नया करने का साहस रखती हैं। तो क्यों ना आज हम ये संकल्प लें कि मौका छोटा हो या बड़ा, हम रुकेंगे नहीं। रास्ता कठिन हो या आसान, हम झुकेंगे नहीं। और सपने कितने भी बड़े हों, हम उनसे डरेंगे नहीं। और इन सपनों के पूरा करने में हमारे समक्ष जो भी चुनौतियां आएंगी, उनसे हम अपनी पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से लड़ेंगे और यकीनन हम उसमें सफल भी होंगे।

0: गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत जतिन ललित का था।
1: बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
0: साथियों, ने बात की युवाओं की, उनके सपनों की, उनके सपनों को साकार करने वाले मुख्य मुख्य बिंदुओं की। लेकिन एक युवा या कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए यकीनन वो पूरी मेहनत करता है, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से उन सपनों को पाने का प्रयास करता है। लेकिन एक चीज़ और होती है जो उसके सपनों को साकार करने का रास्ते को सुगम बना देती है, और वो होती है हमारे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद। यदि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है तो यकीनन हर समस्या, हर चुनौती को हम आसानी से हल कर लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे बुज़ुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि बुजुर्ग हमारे परिवार और हमारे समाज की अमूल्य धरोहर होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना किया होता है, उनके पास जीवन का एक लंबा अनुभव होता है, बहुत ज्ञान होता है जिससे हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, और ये हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व भी है। बुज़ुर्गों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने परिवार को समर्पित कर दिया। माता पिता, दादा दादी ने हमें प्यार, संस्कार और जीवन जीने की सीख दी है। उनके अनुभव हमें कई गलतियों से बचाते हैं। हमें उनकी बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, उनके साथ प्रेम और विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। आज की तेज भागती जिंदगी में कई बार बुज़ुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं, ऐसे समय में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए। उनका सम्मान केवल उनके पैर छूने से नहीं, उनके अभिवादन करने से नहीं होता, बल्कि हमारे व्यवहार से हम उनका सम्मान करें। हम उन्हें समय दें, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, तो यकीनन वो हमें जो दुआएं देंगे वो अपने सपनों को साकार करने में कारगर सिद्ध होंगी। और यकीन जानिए, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो भी बुज़ुर्ग होते हुए भी अपने आप को अपने पुराने ज़माने में ले जाते हैं। मन से वो फिर से जवान हो जाते हैं। तो अपने बुज़ुर्गों को जवान रखें, उन्हें समय दें, उनके साथ वक्त बिताएं और अपने सपनों को पंख दें।

0: अभी आपने किशोर कुमार और महेंद्र कपूर के साथ साथियों को सुना आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फिल्म का नाम अवतार।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
6: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: साथियों, हमने बात की युवाओं की, युवाओं के अवसरों की, उन्हें पंख देने की, और उन पंखों में योगदान देने के लिए बुज़ुर्गों के सम्मान की। इसी कड़ी में यदि हम देखें तो जब युवा कई बार कुछ हासिल करना चाहता है और वो हासिल नहीं कर पाए तो वो तनाव में आ जाता है, और फिर उस तनाव को दूर करने का रास्ता वो ढूंढता है नशे में, जो कि उसके लिए और पूरे समाज के लिए घातक है। क्योंकि नशे से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक पतन हो जाता है, और जिस अवसर की तलाश में वो निकला होता है वो उसे कभी भी हासिल नहीं होता। इसलिए हर युवा को नशे से दूर रहना चाहिए। और कहा भी जाता है साथियों कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो यकीनन मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त रहेंगे, और आज नहीं तो कल हमें हमारी मंजिल जरूर मिल जाएगी। क्योंकि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अच्छा स्वास्थ्य हमें अपने दैनिक कार्यों को उत्साह और ऊर्जा के साथ करने में सहायता करता है। लेकिन यदि हम नशे की लत में पड़ गए तो हम स्वयं समाज के लिए एक समस्या बन जाते हैं, और नशे से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक, आर्थिक हर तरह से नुकसान होता है। हम देखते हैं कि नशे की शुरुआत अक्सर तनाव या फिर गलत संगति के कारण होती है, और धीरे धीरे वो आदत लत में बदल जाती है।

और व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, अपने भविष्य से दूर होता चला जाता है। इस नशे से वह अनेक प्रकार की बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है, उसकी कार्यक्षमता कम होने लगती है और समाज में उसका मान सम्मान सब कुछ समाप्त होने लगता है। इसलिए साथियों, हम यही कहना चाहेंगे कि आप नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहें और समाज में जागृति भी फैलाएं। जो भी साथी इस राह पे चलने की सोचे, उसी वक्त उसे उस राह पे जाने से रोकें, और जो कोई साथी किसी कारणवश इस रास्ते पे चला गया है तो उसे वापस लेकर के आएं और समाज की इस व्यवस्था में उनको पुनर्स्थापित करें। तभी यकीनन हम उसके सच्चे साथी होंगे, क्योंकि कष्ट में, मुसीबत में एक साथी ही दूसरे साथी की मदद कर सकता है। और यदि आपका कोई साथी इस गलत आदत में पड़ गया है तो उसे उससे निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उसे उस रास्ते से वापस लेकर के आएं और समाज की प्रगति की दौड़ में उसको शामिल करें। बहरहाल आइए हम आपको सुनवाएं एक मधुर गीत, जिससे आप यकीनन तरोताजा हो जाएंगे।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: हेलो, हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420-2233 पर कॉल करें।
6: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
7: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
8: साथियों, बात हम कर रहे थे युवाओं की, उनके अवसरों की, उसमें सफलता पाने की, और इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान हमारे बुज़ुर्गों का, युवाओं की मेहनत का, लगन का। और साथ ही हमने बात की कि कई बार युवा साथी किन्हीं कारणों से राह से भटक भी जाते हैं, तो उन्हें इस भटकाव से

रुकना है, और जो साथी इस राह पे चल पड़े हैं उन्हें भी वापस लेकर के आना है। लेकिन यकीनन साथियों, एक बात अटल सत्य है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई भी छोटा रास्ता नहीं है। आपकी लगन, आपकी मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी, भले ही उस सफलता में कुछ समय लग जाए, लेकिन यदि आप उसी मेहनत से, उसी लगन से, पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे तो यकीनन आप एक दिन सफल जरूर होंगे। क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष और मेहनत बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस राह पे चलते हुए बहुत बार अनेक कठिनाइयाँ हमारे रास्ते में बाधाएं बनकर आती हैं, लेकिन वे हमें और मजबूत बनाती हैं। जो व्यक्ति असफलताओं से निराश होकर लगातार प्रयास करना छोड़ देता है वो सफल नहीं हो सकता, और इसके विपरीत जो लगातार प्रयास करता रहता है, इन असफलताओं से भी घबराता नहीं है, वो एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। संघर्ष हमें धैर्य, आत्मविश्वास, साहस और संकल्प सिखाता है। जितने भी हम महान लोगों की बात करें, उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों को पार करके ही सफलता का सोपान किया। इसलिए हमें कठिन समय में घबराने की बजाय मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहना चाहिए। वास्तव में यदि हम कहें तो संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है, और यदि आप यूं ही संघर्षों में घबराए बिना आगे बढ़ते रहे तो यकीनन एक दिन आप जरूर सफल होंगे।

साथियों, भी आपने लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को सुना मेरी जंग फिल्म में। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बातें हमने आज कुछ विषयों पे की और अब बात करें आज के इतिहास की, आज के दिन की। साथियों, आज ही के दिन यानी 18 अगस्त 1800 को लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। आज ही के दिन 1868 में फ्रांस के खगोलविद पेरे जेनसिन ने हीलियम की खोज की। हंगरी ने संविधान को अंगीकार आज ही के दिन 1949 को किया। आज ही के दिन 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिक संस्था

संस्थान की स्थापना की गई। आज ही के दिन 2004 में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर 2 दिन में टेस्ट जीतने का इतिहास रचा। और अब बात करें आज के दिन जन्म लेने वाले प्रमुख हस्तियों की। आज ही के दिन 1985 को भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान गीतिका जाखड़ का जन्म हुआ।

संस्कृति पत्रिका के संपादक थे, उनका निधन हुआ। आज ही के दिन 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सातवें महासचिव कोफी अन्नान का निधन हुआ। तो ये था आज का इतिहास, और आइए अब आपको सुनवाएं एक और गीत।

गुलजार साहब का लिखा, AR रहमान का संगीतबद्ध किया, दिल से फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और आइए इसी कड़ी में एक और गीत हम आपको सुनवाएं।

हाँ मैंने भी प्यार किया। उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ अपने साथी विकास पारिक को युवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दें। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अकॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय सुनिए। अब से कुछ ही समय पश्चात यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की भाषा का कार्यक्रम। किसान वाणी, ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे हमारे जयपुर केंद्र से संध्या 7 बजे। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल संध्या 7:30 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही

फिल्म से होगा रात्रि 8 बजे। राजस्थानी लोकगीत और लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो कोरबंद आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम के प्रस्तोता श्रीपाल शर्मा, संयोजक नवीन सिसोदिया। आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा प्रसारित किया जाएगा रात्रि 10 बजे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। आप सुनिए हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे सुबह 6:10 पर। चिंतन में सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे स्वामिनी सत्यप्रभा के विचार अहिंसात्मक संवाद पर। खेतिया नमस्ते किसान भाई यह कार्यक्रम सुनेंगे 7:10 पर। जानकारी दी जाएगी आंवला एक औषधीय फल। इसके अलावा खेत खलिहान में खजूर की उन्नत खेती के बारे में किसान भाई अपना जानकारी सुन पाएंगे 12:50 पर। रामचरितमानस का सहस्वर पाठ भक्ति संगीत का कार्यक्रम मानस गान होगा सुबह 7:20 पर। सुप्रभात का समय रहेगा सुबह 7:30। गीतों के साथ कुछ विषयों पे बातचीत होगी सार्वजनिक संपत्ति और हम हमारी परंपरा अतिथि देवो भव और असहाय का सहारा बने। सुगम संगीत का समय रहेगा 8:45 पर। मरुमंगल में 9:10 पर हमारे कलाकार होंगे पतराम नाथ और साथी। फिल्मी युगल गीत आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आज के फनकार होगा सुबह 10 बजे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए होगा 11 बजे। फिल्मी गीतों का ही कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत प्रसारित किया जाएगा 12:05 पर। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30। महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम महिला जगत होगा दोपहर 1:05 पर। कुछ और फिल्मी गीत आप सुनेंगे 2:30 पर। और आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम युववाणी में आपकी पसंद होगा शाम 5 बजे। सरायकी का समय 6:05 और पत्रोत्तर में चौपाल जिसमें पत्रोत्तर प्रसारित किया जाएगा संध्या 7 बजे। फिल्म गीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। और आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मन भवन होगा रात्रि 10 बजे। प्रस्तुत होंगी स्मृति बोहरा और संयोजक नवीन सिसोदिया। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 होने को हैं। आइए सराय की भाषा का कार्यक्रम सुनें।

0: एक गीत तुसा महक मलिक दी आवाज़ में सुनते।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 20 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की, सभी दलों से सदन चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। राज्य में बीते 24 घंटों में 62 स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, कल 10 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट।

0: और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रदेश को 2,340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 941 शिलान्यास और लोकार्पण शामिल है। जयपुर में HCM रीपा में आयोजित कार्यक्रम में श्री शर्मा ने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के 1,32,000 से अधिक लाभार्थियों को 154 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि DBT की। इस दौरान श्री शर्मा ने 71 PM बसों को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में सुरक्षा सखी और युवाओं के साथ संवाद भी किया। बिरला सभागार में हुए इस कार्यक्रम में श्री शर्मा ने कहा कि सुशासन के लिए कानून व्यवस्था का पुख्ता होना जरूरी है।
1: आज का यह कार्यक्रम सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये भावना, ये सोच हमारी कार्यप्रणाली का आधार है, क्योंकि अच्छी कानून व्यवस्था अगर होगी तो हमारे प्रदेश का विकास होगा। पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें कि उन्होंने एक जनजागरण के माध्यम से हर थाने में, हर वीट में ऐसे युवा सदस्य निकाले जो उस थाने का सहयोग कर सकते हैं। ऐसी हमारी सुरक्षा सखी निकाली उसमें से जो वो थाने का सहयोग कर सकती हैं। समाज की सक्रिय भागीदारी में उनका सहयोग आवश्यक है।
0: मुख्यमंत्री ने इससे पहले VC के जरिए राज्य उन्नति की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को हर जन परिवेदना का संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेने और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने विभिन्न जिलों में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही राजस्थान संपर्क और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के परिवादियों से सीधे संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी विकास कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में करवाने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में आज जयपुर में सर्वदलीय बैठक हुई। 16वीं राजस्थान विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू होने वाले छठे सत्र से पहले आज ये बैठक बुलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के सदस्यों से सदन चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। श्री देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त करने का माध्यम है। सदन का सुचारू संचालन सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री देवनानी ने भी आश्वस्त किया कि चर्चा में बोलने का सभी को पर्याप्त समय दिया जाएगा। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान मौजूद रहे। इनके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के डॉ सुभाष गर्ग, बहुजन समाज पार्टी के मनोज कुमार न्यांगली, भारत आदिवासी पार्टी के थावरचंद और विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा भी उपस्थित रहे। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही कहा कि मर्यादापूर्ण तरीके से सदन में बात रखी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जी पॉलिसी बनाने वालों के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि खरीफ 2026 के लिए टोंक के मालपुरा और जयपुर के शाहपुरा से फर्जी फसल बीमा कराने की सूचना जांच में सही पाई गई। इसके बाद फर्जीवाड़ा करने वाले इन किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन किसानों ने भूमि रिकॉर्ड में फेरबदल कर नकली पॉलिसी बनाई थी। इसके अलावा वास्तविक क्षेत्रफल फसल के बजाय दूसरी फसल का बीमा करवाया जा रहा था। श्री गोयल ने कहा कि ऐसी पॉलिसियां जारी करने में शामिल ई मित्र संचालकों, दलालों और बीमा कर्मचारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कृषि आयुक्त ने बताया कि इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 53 RAS और 40 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से देर रात इस बारे में आदेश जारी किया गया। साथ ही नए पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। तबादला सूची में राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार,

0: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के सचिव सहित कई जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर और सहायक कलेक्टरों को बदला गया है। नए प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को विभिन्न जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से संबद्ध करते हुए प्रशासनिक और चुनावी जिम्मेदारियों से जोड़ा गया है। राजस्थान पुलिस की ओर से लोगों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतने और सतर्क रहने की अपील की गई है। जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर में उपाधीक्षक सुधीर चौधरी ने निजता का ध्यान रखने और फेस ऑथेंटिकेशन की सुरक्षा का उपयोग करने की सलाह दी है।
1: लोग अधिकतर सोशल मीडिया हैंडल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स आदि यूज करते हैं और उस पर प्राइवेसी का वो ध्यान नहीं रखते, इसकी वजह से साइबर क्राइम फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। आप लोगों को उस पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा कर रखना चाहिए, आपके फेस रिकॉग्नाइजेशन का कोई ऑप्शन आता है वो आपको रखना चाहिए, और जो साइबर फ्रॉड करने का सबसे आसान तरीका होता है ओटीपी के द्वारा। ओटीपी मांगने के भी कई तरीके होते हैं, लोग बैंक फ्रॉड के नाम पर, केवाईसी के नाम पर कोई लिंक भेजकर या कोई मोबाइल नंबर गलत डल गया बोल करके ओटीपी आपसे मांगते हैं और ओटीपी देने के बाद में आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, फिर आपको काफी लंबे समय के बाद इन चीजों का पता लगता है। और आप अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप जल्दी से जल्दी 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सीकर इकाई की ओर से आज अयोध्या साइबर क्राइम थाना के 4 पुलिसकर्मियों को 2,80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी सीकर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि इन आरोपियों ने अयोध्या में दर्ज एक मुकदमे में से परिवादी के भाई का नाम हटाने की एवज में रिश्वत की ये राशि मांगी थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में बीते 24 घंटों में 62 स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। हालांकि तेज बारिश में कमी आई है। दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर और सिरोही जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार कल अलवर, बारा, दौसा, भरतपुर और धौलपुर सहित 10 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट है। 20 से 23 अगस्त के दौरान भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश हो सकती है। उधर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी अगले 2-4 दिन मानसूनी गतिविधियां सुस्त रहने के आसार हैं। हालांकि शेखावाटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून का अगला चरण अल नीनो के प्रभाव के कारण कमजोर रह सकता है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में पौधरोपण के व्यापक कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में बाड़मेर में आज जिला स्तरीय वन महोत्सव रखा गया। न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में हुए इस कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने हरित क्षेत्र के विस्तार के लिए जन भागीदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उधर जैसलमेर के राजकीय नर्सिंग कॉलेज में पौधरोपण कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर हरित राजस्थान का संदेश दिया। सेमिकॉन इंडिया 2026 का 5वां संस्करण अगले महीने नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 17 से 19 सितंबर तक होने वाले इस सम्मेलन में 40 से ज्यादा देशों की 500 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन सिलिकॉन 2 सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम की थीम पर रखा गया है। श्री कृष्णन ने कहा कि सम्मेलन में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया सहित 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। विभिन्न खेलों के 15 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें महिला बैडमिंटन डबल्स की प्रमुख जोड़ी ट्रिसा जॉली और पल्लेल्ला गायत्री गोपीचंद भी शामिल है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ईसा यहा अरुमेनायागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर

0: सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चौहान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चुना गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार खेलों के प्रोत्साहन और विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कॉरपोरेट संस्था और गैर सरकारी संगठन को दिया जाता है। प्रदेश में ई मित्र व्हाट्सएप पर उपलब्ध सरकारी सेवाओं का दायरा अब 51 से बढ़ाकर 103 हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि ई मित्र व्हाट्सएप के जरिए नागरिकों के लिए 100 से अधिक सरकारी सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से 2340 करोड़ रुपए के 941 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 20 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की, सभी दलों से सदन चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। राज्य में बीते 24 घंटों में 62 स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, कल 10 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बांकी बिहारी शर्मा। जिले में बीते माह ग्रामीण सेवाओं, स्वास्थ्य, रोजगार, जल संरक्षण और कृषि से जुड़े कामों के साथ सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां जारी रहीं। ग्रामीण सेवा शिविरों से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला और राहत मिली। वहीं पांचना बांध के पानी बंटवारे से जुड़े लंबे विवाद का समाधान हुआ। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाएं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने की कार्रवाई की। शिविर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का माध्यम बने। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप देने की दिशा में काम आगे बढ़ा। हर नागरिक के लिए आभा आईडी तैयार की जा रही है। जिले में अब तक करीब 13,70,000 आभा आईडी, 609 हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और 1,719 हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री दर्ज की जा चुकी हैं। आभा आईडी से नागरिक अपने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला खाद्य और औषधि नियंत्रण कार्यालय में 6 नए स्थायी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। नए अधिकारियों की नियुक्ति से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच और खाद्य सुरक्षा नियमों की पालना से जुड़े कामों को गति मिलने की उम्मीद है। प्रगति पथ पर गतिमान राजस्थान के राज्यस्तरीय कार्यक्रम का करौली के टाउन हॉल में सीधा प्रसारण किया गया। प्रदेश के 10,548 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए, जिनमें करौली के 175 युवा शामिल रहे। जल अर्पण दिवस के तहत जल जीवन मिशन की 17 गांवों की हर घर जल योजनाओं को ग्राम जल और स्वच्छता समितियों को संचालन और संधारण के लिए सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। ग्रामीणों को जल योजनाओं के रखरखाव, जल स्रोतों के संरक्षण, जल गुणवत्ता और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। पांचना बांध के पानी बंटवारे को लेकर करीब 2 दशक से चला आ रहा विवाद सहमति से सुलझा। इसके बाद पांचना बांध की वितरिकाओं में करीब 2 दशक बाद पानी प्रवाहित किया गया। इससे किसानों को सिंचाई व्यवस्था को लेकर राहत मिली और पानी की उपलब्धता को लेकर उम्मीद बढ़ी। जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। मुख्य समारोह मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में हुआ। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली 34 प्रतिभाओं को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। हर घर तिरंगा अभियान की भी जिले भर में धूम रही।

0: यात्रा और प्रभात फेरी आयोजित की गई। हाल ही में जिले में वीरांगना अवंती बाई लोधी का 196वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान उनके साहस, वीरता और देशभक्ति को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए याद किया गया, साथ ही प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। स्लीपर और लग्जरी बसों तथा स्कूल बसों की जांच के दौरान 18 वाहनों की जांच की गई। नियमों के उल्लंघन पर 15 वाहनों के चालान किए गए और 3 वाहन जब्त किए गए। श्रावण मास के चलते जिले का वातावरण पूरी तरह धार्मिक नजर आ रहा है। जिले के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहते हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में दर्शन और पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं श्रावणी तीज के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित श्री मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में दिन भर धार्मिक माहौल रहा और श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसी के साथ करौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर 2340 करोड़ रुपए का खर्च वाला विकास रा 941 कामारी नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 20 अगस्त सरूफे वन वाला मानसून सत्र पहली आज सगली पार्टियां रा नेताओं री मीटिंग बुलाई, सदन चलावण माए सकारात्मक भूमिका री अरज कीनी। राज्य माए काल 10 जिला सारू बरसात रो येलो अलर्ट जारी करी चियो और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 रो ऐलान, 15 खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार देर नवाजा जावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज 2340 करोड़ रुपए का खर्च वाला विकास रा 941 कामारी नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। जयपुर में राखी जिया कार्यक्रम में श्री शर्मा श्रम विभाग री न्यारी न्यारी योजनावां रो फायदो लेवण वाला 132,000 रो बत्ता जना रा खाता में 154 करोड़ रुपया बत्ती रकम भेजी। इन दौरान श्री शर्मा 71 ई बसा ने वर्चुअल तरीका रवाना कीनी। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सुरक्षा सखियां और नौजवाना सा गई बातचीत कीनी। ई मौके वे कहो के सुशासन सारू कानून व्यवस्था मजबूत वेवनी जरूरी है।
2: आज का ये कार्यक्रम सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये भावना, ये सोच हमारी कार्यप्रणाली का आधार है, क्योंकि अच्छी कानून व्यवस्था अगर होगी तो हमारे प्रदेश का विकास होगा। पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें कि उन्होंने एक जनजागरण के माध्यम से हर थाने में, हर वीट में ऐसे युवा सदस्य निकाले जो उस थाने का सहयोग कर सकते हैं। ऐसी हमारी सुरक्षा सखी निकाली उसमें से जो वो थाने का सहयोग कर सकती हैं। समाज की सक्रिय भागीदारी में उनका सहयोग आवश्यक है।
1: मुख्यमंत्री इनो पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज उन्नति री समीक्षा बैठक लीनी। मीटिंग माए वे अहलकारा ने जनता री परेशानियां माथे खास ध्यान देता थका वाने असरदार तरीकों निपटावन रा हुकम दीना। श्री शर्मा न्यारा न्यारा जिला माए चाल रिया कामां रो जायजो लेवण सागे राजस्थान संपर्क और मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल माथे शिकायत दर्ज करावन वाला सागे बातचीत कीनी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री सदारत माए आज जयपुर माए सगली पार्टियां री मीटिंग राखी जी। 16वीं राजस्थान विधानसभा रा 20 अगस्त सरूफे वन वाला छठा सत्र पहली आज बुलाई जी ई मीटिंग माए स्पीकर सगली पार्टियां रा नेताओं सदन री कार्रवाई ठीक ढंग चलावण माए मदद री अरज कीनी। ई मौके श्री देवनानी कहो का सदन री कार्रवाई ठीक तरीका चलावण री सगला सदस्यों री भेली जिम्मेदारी है। श्री देवनानी चर्चा रे दौरान बोलन सारू सगला ने जरूरी टीम देवन रो भरोसो दिरायो। पखर विपखरी ओर हुई स्पीकर ने जनता रा भला रा

0: मुद्दा माथे सार्थक चर्चा करण रो भरोसो दिराइचियो। मीटिंग में संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, सदन में विपक्षरा नेता टीकाराम जूली, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और विपक्षरा मुख्य सचेतक रफीक खान, राष्ट्रीय लोकदल रा डॉक्टर सुभाष गर्ग, बहुजन समाज पार्टी रा मनोज कुमार न्यांगली और भारत आदिवासी पार्टी रा थावर चंद ई मौजूद हा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रा तहत फर्जी बीमा पॉलिसी बनावण वाला रा खिलाफ कृषि विभाग कार्रवाई शुरू करती नी है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल बतायो कि खरीफ 2026 सारू टोंक जिला रा मालपुरा और जयपुर के न शाहपुराओं फर्जी फसल बीमा करावन रे सूचना जांच माई सही मिली। इन पाछे फर्जी तरीकाओं बीमो करावन वाला रे खिलाफ FIR करावन रा हुकम दिया चिया। श्री गोयल कहो कि अड़ी पॉलिसियां करावन माई शामिल ई मित्र चलावन वाला दलाला और बीमा कर्मचारियों रे खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करी जावेला। राज्य सरकार 40 IAS और 53 RAS अहलकारा रा तबादला कर दीना है। तबादलारी लिस्ट में राजस्थान विश्वविद्यालय रा रजिस्ट्रार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर रा सचिव और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल रा सचिव समेत कई जिला रा अतिरिक्त जिला कलेक्टर और सहायक कलेक्टर शामिल है। सिखावन लेरिया IAS अहलकारा ने न्यारा न्यारा जिला में निर्वाचन अधिकारी रा दफ्तरों जोड़ प्रशासनिक और चुनावी जिम्मेदारियां दिरीची है। नुआ लगाई जिया अहलकारा ने तुरंत कामकाज संभाल बारा हुक्म दिया चिया है। राजस्थान पुलिस री ओर लोगों ने सोशल मीडिया रो इस्तेमाल करते वक्त खास सावचाती राखण री अर्ज करीची है। जयपुर पुलिस मुख्यालय रा साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर में DSP सुधीर चौधरी निजता रो ध्यान राखता थका फेस ऑथेंटिकेशन रो सुबितो काम लेवन री राय दीनी।
1: लोग अधिकतर सोशल मीडिया हैंडल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक्स आदि यूज करते हैं और उस पर प्राइवेसी का वो ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से साइबर क्राइम फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। आप लोगों को उस पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा कर रखना चाहिए। आपके फेस रिकॉग्नाइजेशन का कोई ऑप्शन आता है वो आपको रखना चाहिए। और जो साइबर फ्रॉड करने का सबसे आसान तरीका होता है OTP के द्वारा। OTP मांगने के भी कई तरीके होते हैं। लोग बैंक फ्रॉड के नाम पर, KYC के नाम पर कोई लिंक भेजकर या कोई मोबाइल नंबर गलत डल गया बोल करके OTP आपसे मांगते हैं और OTP देने के बाद में आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। फिर आपको काफी लंबे समय के बाद इन चीजों का पता लगता है और आप अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप जल्दी से जल्दी 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य में लाडला 24 घंटा में दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर और सिरोही जिला में कठे कठे हल्क्यू मझला दर्जा री बरसात हुई। मौसम विभाग काल अलवर, बारा, दौसा, भरतपुर और धौलपुर समेत 10 जिला सारू बरसात रो येलो अलर्ट जारी किनो है। 20-23 अगस्त बीच भरतपुर और जयपुर संभाग में कठा कठा छुटपुट बारिश वेवन रा आसार है। दूजगानी जोधपुर और बीकानेर संभाग में आवता 2-4 दिन चौमासा री बिरखा सुस्त पड़ जावन री संभावना है। हालांकि शेखावाटी हल्का और RSRA कठा कठा बिरखा फै सके है। हरियाणा और राजस्थान अभियान रा तहत बाड़मेर में आज वन महोत्सव राखी जियो। न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में राखी जाई कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई हरियाली बधावन सारू जनतारी भागीदारी माथे जोर तीनो। जैसलमेर रा राजकीय नर्सिंग कॉलेज में आई पौधा रोपण रो कार्यक्रम थियो, चिणमाए विद्यार्थी भांत भांत रा पौधा लगाया। देश में हाल ताई 2 करोड़ 32 बच्चा रा बायोमेट्रिक अपडेट कर दिया चिया है। लाडला साल सितंबर महीनाओं चलाई जिया खास अभियान रा तहत 1.5 लाख 32 स्कूलों में बच्चा रा आधार बायोमेट्रिक अपडेट रो सुबितो दियो चियो। ध्यान जोग है कि 5 सालों कम उम्र रा बच्चा रा आधार में केवल नाम, पता और फोटो दर्ज कराया जावे है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 रो ऐलान करती हो चियो है। इन तहत न्यारा न्यारा खेलना रा 15 खिलाड़ियों ने चोखा खेल रो दर्शाव करण सारू अर्जुन पुरस्कार देर नवाजा जावेला। आम आए महिला बैडमिंटन डबल्स री खास जोड़ी ट्रिसा जॉली और पल्लेला गायत्री गोपीचंद शामिल है। भारत में फुटबॉल रा बेहतरीन खिलाड़ी ईसाया अरुमेनाया गमन रो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम देर मान करियो जावेला। ईसा गई एथलेटिक्स रा कोच परवीर सिंह, मुक्केबाजी रा कोच छोटे लाल यादव और निशानेबाजी रा कोच नेहा

0: नंद कुमार चौहान ने द्रोणाचार्य पुरस्कार तियोचावेला। पुणेरी आर्मी पैरालंपिक नोड ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार सारू चुनीचियो है। नई दिल्ली में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप रा एकल मुकाबला में आज भारत रा लक्ष्य सेन रो मुकाबलो ऑस्ट्रिया रा कॉलिंस वैलेंटाइन फिलिमोन नो भेरियो है। इनु पहली महिला एकल मुकाबला में भारत री उन्नति हुडा म्यांमार री थेट्टार ने 22-20-21-16 शिकस्त दीनी। महिला डबल्स रा एक मुकाबला में भारत री सिमरन सिंघी और कवि प्रिया सेल्वम री जोड़ी बुल्गारिया री स्टेफनी स्टोवा और ग्रेबियला स्टोवा री जोड़ी 21-7-21-14 हार गई। आज ही व्या महिला डबल्स रा एक और मुकाबला में भारत री ट्रीसा चौली और पल्लेला गायत्री गोपीचंद री जोड़ी अमरीका री लॉरेन लेम और एलिसन ली री जोड़ी ने 21-15-21-12 शिकस्त दीनी। मिक्स्ड डबल्स में भारत रा असित सूर्या और अमृता प्रमुथेश री जोड़ी ने तुर्की री जास्मीन बेगताज और एमरे सोमेंस री जोड़ियों 21-16-29-30-22-24 हार रोसा मौकण नुपड़ियो। मिक्स्ड डबल्स रा एक और मुकाबला में भारत री रुत्विका गड्डे और रोहन कपूर री जोड़ी नई कनाडा रा जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई री जोड़ियों 20-22-21-19-21-17 शिकस्त मिली। दूजी कहानी श्रीलंका रा कोलंबो माए भारत और श्रीलंका बीच चल रहा क्रिकेट टेस्ट मैच माए भारत पकड़ मजबूत कर लेनी है। श्रीलंका ने मैच जीतन सारू काल आखिरी दिन 288 रन और बनावना फैला जबकि हमारा चार बल्लेबाज 84 रन बना आउट फेंकया है। आज मैच रा चौथा दिन भारत री टीम दूजी पारी माए 193 रन बना आउट फेंकी जिम पाछे श्रीलंका ने मैच जीतन सारू 372 रन बनावन रो लक्ष्य मिल्यो। भारत पहली पारी माए 462 रन बनाया है। प्रदेश माए ई मित्र व्हाट्सएप माथे मुहैया कराई जा रही सरकारी सेवावां री तादाद 51-103 करती रिची है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आयुक्त हिमांशु गुप्ता बतायो कि ई मित्र व्हाट्सएप के जरिए हाल ताई 232,000 लोग सरकारी सेवाओं रो फायदो घर बैठे ही ले चुका है। इन सारो व्हाट्सएप नंबर 9461062705 माथे संपर्क करियो जा सके है। नंबर ओजो सुन ले राव सा 9461062705। ब्रिक्स देशां रा पर्यावरण मंत्रियां रो सम्मेलन आज नई दिल्ली में राखी चियो। सम्मेलन री सदारत करता थका केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव इंसानियत रो खास ध्यान राखता थका लगातार विकास सारू नीति प्रौद्योगिकी और जनतारी भागीदारी रो तालमेल बिठावण माथे जोर दीनो। श्री यादव ब्रिक्स सदस्य देशां रा नुमाइंदा दलाना मुखियां सागे ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह री ओर बनाई जा चार ज्ञान संकल्पां रो अनावरण कीनो। आमाए ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह री ओर करी जा रचनात्मक विचार विमर्श नई शामिल करी चियो है। श्री यादव बतायो कि साल 2005-2022 रे दौरान भारत माए प्रदूषण माए 37% बत्ती कमी आई। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर 2340 करोड़ रुपए रा खर्च वाला विकास रा 941 कामारी नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 20 अगस्त शुरू होने वाला मानसून सत्र पहली आज सगली पार्टियां ना नेताओं की मीटिंग बुलाई सदन चलावण में सकारात्मक भूमिका री अरज कीनी। राज्य में काल 10 जिला सारू बरसात रो येलो अलर्ट जारी करी चियो। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 रो ऐलान 15 खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार देर नवाजा जावेला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगला श्रोतावा ने आशादा भाई का घना घना राम राम, और महेश भाई आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
7: राम राम आशा जी आपने, और जो अपना काश्तकार भाई लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं किसान वाणी, बाने भी घनी मोकली राम राम। और आशा जी का हाल चाल बढ़िया?
6: हाल चाल बढ़िया है चैसा। और देखो आज बात करे ना किसान वाणी कार्यक्रम में, और बात किसाना से जुड़ी ही हुए तो और भी बहुत बढ़िया। तो देखो सा, बरसात को मौसम चल रहे छे, और ई मौसम के मायने थोड़ी सी अगर सावचेती अपना काश्तकार भाया किसान भाई बरत लेवे तो मोटो मोटो फायदो आने हो जावे छे। क्योंकि बरसात को मौसम छे, ई मौसम में इंदर राजा कद मेहरबान हो जावे, कद रूस जावे, यो तो आपने पतो को ने, पर हाँ सावचेती राखबो आपनो काम छे, ताकि आप अपनी फसल ने सुरक्षित राख सका और वासियों चोखो उत्पादन ले सका। अब मान लो एकदम सु बरसात बरस रही चे 2-4 दिन तानी लगातार, तो सावचेती यही राखनी चे कि आपा अपने खेत में जल निकास की जो व्यवस्था चे उन्हें अच्छी तरह से ध्यान में रखा कि आपने खेत में पानी को जमाव या भराव न होवे, क्योंकि सीधो सीधो फसला ने प्रभावित कर लो। दूसरी मोटी बात यह भी ध्यान रखो सा कि ई टाइम ही आपकी फसला की बढ़वार हो रही चे, तो आपके फसलों की बढ़वार के साथ साथ ही उनको सुरक्षा को भी पूरो पूरो ध्यान रखोला। ई ताई मेड़बंदी अच्छी तरह से करो, साथ ही साथ हो सके तो तारबंदी कर लो, ताकि सुरक्षित उत्पादन आपका घर तक पहुंच सके। और महेश भाई एक बात को और ध्यान देना है, वो या कि ई मौसम के मायने खरपतवार भी तेजी से बढ़े छे, और पशुओं जो अपनी फसला छे वहाँ का जो पोषक तत्व छे वहाँ अवशोषित कर लेवे छे, तो बढ़वार कम हुए छे, गुणवत्ता में फर्क पड़े छे। ई ताई खरपतवार नियंत्रण भी घणो घणो जरूरी छे।
7: खरपतवार ने भी निकालनी है, और जी अबारा बताया कि भी खेत कमाए पानी को जमा हो गया है, पानी ज्यादा इकट्ठे हो रहे है, भी फसल गड़बड़ने लग जाए तो भी पानी के निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, और पानी तेजी से बह के आ रहे है, तेज बारिश कमाए तो आसान न हो कि भी खेत की माटी भी पानी के साथ में बह के बारे चले जावे, तो खेत की थोड़ी सी पक्की मेड़बंदी किसान भाई करा ली, और साथ में देखो फसल जब थोड़ी बड़ी होबाने लाग जाए तो जब आवारा पशु ही बस फसल ने खतरा होवे, तो खेत की सुरक्षा के लिए तारबंदी और मेड़बंदी जरूरी है। तो किसान भाई ये को भी ध्यान रखें। और अब देखो अपना ये कार्यक्रम का माय देखो जो जानकारी है खास वह है फसल उत्पादन में जल विलय उर्वरक और जैव उर्वरकों को महत्व, जानकारी देसी डॉक्टर कमलेश शर्मा, और आपसे जानकारी ले रही है अनिता वैन, तो दिरावा किसान भाई ने जानकारी।
6: बिल्कुल सा। किसान वाणी सुनबा वाला सभी किसान भाया ने अनिता की घनी घनी राम राम सा। श्रोतावा किसान वाणी में हमेशा ही मैं आपके लिए नई नई जानकारियां ले रहा छा, यही आज की जानकारी ले रहा छा आपके लिए फसल उत्पादन में जल विलय उर्वरक और जैव उर्वरक का महत्व का बारा में। ई विषय पर जानकारी देबा के लिए आज अपना स्टूडियो में पधारा छे डॉक्टर कमलेश शर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर में आप विराजे छे। डॉक्टर कमलेश शर्मा जी आपको कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत छे। राम राम सा।
8: राम राम सा।
6: तो सबसे पहली मैं आपसे यही जानवो चाहला जी, आप फसल उत्पादन में जल विलय उर्वरक को काही महत्व छे?
8: देखिए किसान भाइयों, फसल उत्पादन में जल विलय उर्वरकों का

0: बड़ा महत्व है।
1: जी,
0: सबसे पहला महत्व तो यही है कि जो हमारे पोषक तत्व फसलों को चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कुछ सूक्ष्म तत्व भी जैसे जिंक, आयरन, बोरोन, ये सभी हम जल विलेय उर्वरकों के माध्यम से फसलों को पहुंचा देते हैं और फसलें उन पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर लेती है। दूसरा महत्व यह है कि इन उर्वरकों के द्वारा पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता बढ़ती है।
1: जी,
0: यानी कि वो पोषक तत्व जो है जितना हम जल विलेय उर्वरकों में डाल के देते हैं उसमें से अच्छी मात्रा में पौधे उनका अवशोषण कर सकते हैं। इसके बाद में फर्टिगेशन का उपयोग करके हम जो है इन जल विलेय उर्वरकों को फसलों को देते हैं। फर्टिगेशन का अर्थ है कि सिंचाई के जल के साथ में इन जल विलेय उर्वरकों को मिला करके और फसलों को देते हैं, उससे वो आसानी से फसलें उनको ग्रहण कर लेती है। इसके बाद में इन जल विलेय उर्वरकों का ये भी महत्व है कि ये फसल की वृद्धि एवं उत्पादन में वृद्धि करते हैं, क्योंकि समय समय पर हम सिंचाई करते हैं और समय समय पर सिंचाई के साथ साथ ही हम जब इनको मिला के देते हैं तो वो उर्वरकों की आवश्यकता, उन पोषक तत्वों की आवश्यकता फसलों को पूर्ति होती रहती है
1: जी।
0: इस वजह से उसके उत्पादन में वृद्धि होती है और उस पौधों की बढ़वार भी होती है
1: जी।
0: इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मृदा में पोषक तत्वों का समान रूप से वितरण होता है, क्योंकि जैसे हम ऐसे छिड़काव करके डालते हैं तो वो कहीं कम गिर जाता है और कहीं ज्यादा गिर जाता है, लेकिन जब हम जल विलेय पानी में मिलाकर के उस यूरिया को डालते हैं तो वो आसानी से पूरे एक समान रूप से फसलों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं
1: जी।
0: तो यह भी इसका बहुत महत्व है। फिर महत्व है कि हमारे समय की बचत होती है और लेबर की बचत होती है। इस प्रकार इसके आगे के इसका महत्व की बात करें, ये जो सब्जियां हैं, फल है, फूल है, बागवानी की फसलें हैं, इन सभी में जल विलेय उर्वरकों को आसानी से उनके जब आवश्यकता हो
1: जी
0: तब हम उनकी पूर्ति कर सकते हैं। और क्योंकि फसल का समय लंबा होता है तो उसमें बीच बीच में पोषक तत्वों की पूर्ति करना आवश्यक होता है, तो सिंचाई के साथ में इन जल विलेय उर्वरकों को हम आसानी से दे सकते हैं।
1: जी सर, आप बात कर रहे हैं भाई जल विलेय उर्वरक का महत्व का बारे में, पर सर अब यह बताओ भाई जल विलेय उर्वरक का प्रयोग अगर अपना किसान भाई कर रहा है तो वन इको काई लाभ हो लो।
0: देखिए, जल विलेय उर्वरकों को अगर किसान साथी कर रहे हैं तो लाभ उनको यही होता है कि एक तो पोषक तत्वों की बर्बादी नहीं होती है
1: जी,
0: दूसरा किसान का समय बचता है और किसान की लेबर बचती है, क्योंकि किसान को इन जल विलेय उर्वरकों को सिंचाई के पानी के साथ ही देना होता है, इस वजह से उसको लेबर भी बच गई, उसका समय बच गया और जो है उसके पास में जो पोषक तत्वों का जो नुकसान होता था पहले, वो पोषक तत्वों का नुकसान नहीं होगा और संतुलित मात्रा में वो पोषक तत्व उस फसल को प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनका बहुत लाभ मिलता है किसानों को और जल विलेय उर्वरकों के यूज से जो है फसल में बढ़वार भी अच्छी होती है।
1: तो सर जी, आप ही आपा बात कर रहे हैं जल विलेय उर्वरक का बारे में, और अब बात करा जैव उर्वरक की, तो जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर कहीं हो चे या अपना किसान भाइयों ने बताओ सर।
0: देखो किसान भाइयों, जैव उर्वरक या इसका इंग्लिश में नाम है बायो फर्टिलाइजर
1: जी,
0: तो जैसा कि नाम ही बता रहा है जैव उर्वरक, यानी इसमें कुछ जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराना, इस प्रकार के जीवों को जैव उर्वरक कहते हैं या बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। इनका भी बहुत महत्व है। इसमें बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें से मैं आपके सामने कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पर्लम है, फास्फेट, घुलनशील जीवाणु है और माइकोराइजा है। ये कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये भी ये फसलों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
0: अब मैं जैसे आपके बात कहूँ राइजोबियम की, यह एक जैव उर्वरक है। यह राइजोबियम है जो दलहनी फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है और ये दलहनी फसलों में प्रयोग करने से मिट्टी में ये नाइट्रोजन की मात्रा को

0: जमा करते हैं और फिर वो नाइट्रोजन पौधे द्वारा अवशोषण कर ली जाती है
1: जी।
0: उसी प्रकार से एजोटोबैक्टर है, ये अनाज वाली फसलों में इनका प्रयोग किया जाता है और ये भी जो है नाइट्रोजन को फसलों को देते हैं। तो इस प्रकार से बायोफर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अब आज जब हम संतुलित उर्वरक देने की बात करते हैं तो उसमें बायोफर्टिलाइजर भी एक मुख्य अंश है। इस प्रकार से हमको अब बायोफर्टिलाइजर्स का यूज धीरे धीरे ज़्यादा करना चाहिए।
1: तो जी कि आप बात कर रहे हैं भाई जैव उर्वरक का ही हो जाए, आप बहुत सारा जैव उर्वरक की बात भी करी, तो ये फसल में की तरीका से मदद करे छे बढ़वार में?
0: देखिए किसान साथियों, जैसा कि अभी अनिता मैडम ने पूछा कि ये जैव उर्वरक किस प्रकार से फसल उत्पादन में मदद करते हैं, तो अब देखो जब